0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: अरे न खुश और बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उनकी नमी के लॉक करे चावरन जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस झुरन के घट कर रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन दिन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ब्राइट उन गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसे हर कतरे सा चेहरे के मिले खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आई
3: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94

0: जी नहीं, मुझे नंद्रतार भी है कुछ तो मुझे नालो त्राई मोहम्मद अनवर धोन है आई मुझे तालुक धोन लश्कर घोट का है आई तालीम मुझी बीएससी मो हावे आने कंप्लीट की है आई जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहंदो आया
1: जी जी
0: आई कुछ उदार है जिसे मैं पारा उदार है रेजुलेशन होल्ड करना है
1: पंद्रह अक्टूबर से अखिन का महरूम मानन जो आलमी डी मल्हायो वेंदो आहे उनमें तव्हां छा चवणु चाहींदव
0: जी नहीं 15 अक्टूबर जी तकरीबन पूरी दुनिया में मल्हायो वेंदो आहे आलमी डी आहे जो अचकल जो नकुल हों जो नाबिन के हवाले से इस्तेमाल टी अख भी अगर नाबिन चई वे तो कोई मसलो ना है इनके जरिए असंदा घुमंदा महसूस क्या कि खबो आड़ो आ ना
1: जी जी
0: जो इल्म के लिए वह

0: तव्हां जे लाइ इल्म बि टीह खाए, तव्हां जे लाइ अछो लकड़ बि टीह खाए।
1: जी जी, अगर मिलाए करे कजे त हिकिड़ी मतिलबु फालतू गेदर हिकिड़ी असांखे न वॾी अघु मिली थी वञे।
0: माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा अनवर, तव्हां तालीम सां अलावा तव्हां को कहिड़ियूं कहिड़ियूं तव्हां रांदियूं खेॾंदा आहियो?
1: साईं, हिन वक़्तु जंहिं तारे ते मां जनरल सेक्रेटरी आहियां डिवीज़न ते, त उन में मुख़्तलिफ़ असांजी रांदियूं शामिल आहिनि नाबीननि जे लाइ।
0: जी जी,
1: जंहिंमें शतरंज, गोल बॉल ऐं पंहिंजो जूडो, स्विमिंग, आर्चरी, अहिड़नि मुख़्तलिफ़ रांदियुनि ते जेको आहे कमु हले पियो, जंहिंजी तक़रीबन कोई 8 तारीख़ ते नेशनल चैंपियनशिप बि हुई चेस जी, छाकाणि त इंटरनेशनल पंहिंजो थियण वारो आहे इवेंट।
0: जी जी,
1: नवंबर 5 खां 15 ताईं कराची खे होस्टिंग पाकिस्तान खे मिली आहे।
0: जी जी,
1: त उहा बि अलहमदिल्ला काफ़ी बहितरीन रही असांजी।
0: अच्छा अनवर धुन साहब, तव्हां जेको आहे सो ब्लाइंड आहियो, तव्हां माशाल्लाह अखियुनि खां महरूम थी करे तव्हां माशाल्लाह तालीम हासिलु कई आहे, जे तव्हांजी बी एस सी थियल आहे डिग्री कॉलेज लाड़काणे मां, त उन खां अलावा तव्हां रांदियूं बि खेॾो था, उन में तव्हां उहिदेदार बि आहियो, त ॿियो को बि तव्हांखे उहिदो आहे अहिड़ो स्पोर्ट्स जे हवाले सां, पंहिंजो नाबीननि जे हवाले सां?
1: जी जी, हिकिड़ो ॿियो इदारो आहे असांजो ब्लाइंड वाइज़ फाउंडेशन, जिते जेको प्रोविंशियल आहे।
0: जी जी,
1: उते बि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आहियां
0: ऐं हाल
1: ई असां जेको आहे क्रिकेट शुरू कराई आहे छंछर ऐं आर्तवार जे ॾींहुं, जेकी शांका मेडिकल कॉलेज वारे ग्राउंड में थींदी आहे पंहिंजो।
0: जी जी,
1: मंझंदि 3 बजे खां राति जो 9 बजे ते।
0: अच्छा, पोइ इहे तव्हां पंहिंजो ॿ टे उहिदा संभालियो था, हिन में का दिक़त का तकलीफ़ कोन पई थिए?
1: न साईं, अलहमदिल्ला जेको आहे सो त ॾिसो, जेकॾहिं कुझु करिणो आहे त हुन जे लाइ ज़िमेवारियूं खणणियूं बि पवंदियूं ऐं महसूसु करे हुननि खे निभाइणो बि पवंदो आहे।
0: जी जी,
1: त हुनजे करे मैनेज करिणो पवंदो आहे हेॾां बि होॾां बि, ऐं साथ आहे तक़रीबन ॿिन्ही इदारनि जा जेके असांजा ॿिया डेजिग्नेशन होल्डर आहिनि उन्हनि जो बि, जंहिं करे ही मुंहिंजे लाइ कुझु जेको आहे आसान आहे ज़िमेवारी निभाइणु।
0: माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा अनवर धुन साहब, तव्हां कॾहिं मुल्क खां ॿाहिरि विया आहियो, या के पाकिस्तान जे अंदरि पंहिंजे सिंध सूबे में, पंजाब सूबे में, के पी के बलोचिस्तान के टूर वग़ैरह तव्हां कंदा आहियो?
1: जी जी साईं, अलहमदिल्ला पाकिस्तान खां ॿाहिरि न, बाक़ी डोमेस्टिक लेवल ते कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा ऐं पंहिंजो पिशावर वग़ैरह हिते असांजो वञणु थींदो रहंदो आहे, लाहौर, मतिलबु पाकिस्तान जे अंदरि जेके बि काफ़ी कैपिटल्स वग़ैरह आहिनि मुख़्तलिफ़ शहर, उते असांजो वञणु थींदो आहे इवेंट जे हवाले सां या हूअं गैदरिंग असांजो जेको टूर थींदा आहिनि।
0: माशाल्लाह, ज़बरदस्त। असांजा भाउ अनवर धुन साहिबु, तव्हां ब्लाइंड आहियो, अखियुनि खां नाबीन आहियो, तव्हांजी एॾी तालीम आहे, तव्हांजी जुस्तजू आहे, तव्हांजी रांदि आहे। अच्छा पंहिंजो तव्हां कंप्यूटर कोर्स वग़ैरह या को शॉर्ट हैंड या टाइपिंग वग़ैरह तव्हां कई आहे?
1: जी जी, अलहमदिल्ला कंप्यूटर जा शॉर्ट कोर्सिस मूंखे आहिनि 2 खां 3।
0: जी जी,
1: जंहिंमें असां जेको एम एस वर्ड बि सिखियो आहे ऐं मतिलबु जेके एम एस असेशन असेंशियल्स हूंदा आहिनि हुन ते बि थोरी ग्रिप थी आहे, ऐं टाइपिंग वग़ैरह सां बि, छाकाणि त इहो असांखे यूनिवर्सिटी लेवल ते बि हिनजी ज़रूरत पवंदी आहे।
0: जी जी,
1: ख़ुशूसनि जेके नाबीन आहिनि।
0: जी जी,
1: उन्हनि खे जेतिरी बि ॼाण ऐं मालूमात हुजे उहा उन्हनि जे लाइ कारामद रहंदी आहे। हाणे त AI जो दौरु आहे, उहो बि काफ़ी असांजे लाइ मददगार आहे।
0: वाह वाह, सही।
1: जी जी सर।
0: अच्छा अनवर, तव्हां पंहिंजो ब्लाइंड ॼाए जमा खां आहियो या तव्हां बाद में थिया आहियो?
1: जी न साईं, असल में मां पहिरियां जेको ॾिसंदो हुयमि, नज़र हूंदी हुई नंढे लाॻू।
0: जी जी,
1: बाद में हिकिड़ो एक्सीडेंट थियो तक़रीबन 2012 में, अख में मुंहिंजे तक़रीबन धकु लॻो, जंहिंजे करे मुंहिंजो ॿई अख डेमेज थी वियो। 2012 खां वठी जेको आहे सो मां बिल्कुलु B1 आहियां। B1 मां मुराद इहो आहे त मतिलबु नज़र कुझु बि न ईंदो आहे।
0: सही। अच्छा माना पोइ बि तव्हां हिन इंसिडेंट जे करे तव्हां पंहिंजी हिमत न हारी, तव्हां पंहिंजी महिनत जारी रखी, तव्हां पंहिंजी तालीम जारी रखी। अच्छा तव्हांखे का गवर्नमेंट जॉब वग़ैरह बि आहे?
1: जी जी साईं, अलहमदिल्ला जेको आहे सो पहिरियों त इहा ॻाल्हि मां ज़रूरु चवणु चाहींदुसि, मूंखे मुंहिंजे हिकिड़े ॻोठ सां तालुक़ु आहे, उतां करण में मुंहिंजे वालदेन जो जेको आहे अहम किरदारु रहियो आहे, जेके रोज़ाना जी बुनियाद ते मूंखे लालगांव शहर वठी वेंदा हुया ऐं स्कूल में जेको आहे ड्रॉप कंदा, पिकिंग ड्रॉप हूंदी हुई मुंहिंजी।
0: जी जी,
1: आउट ब्रेक असांजो रहंदो हूंदो हो पंहिंजो रोज़ाना जी बुनियाद ते, ऐं जेको आहे जॉब जे हवाले सां इहो आहे त बिल्कुलु मुंहिंजी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जी जॉब आहे जेकी मां तक़रीबन जनवरी खां वठी कंदो पियो अचां।
0: सर माशाल्लाह, तव्हां गवर्नमेंट जॉब बि आहे, तव्हांजी तालीम बि आहे, तव्हांजी रांदियूं बि आहिनि, ऐं माशाल्लाह मुख़्तलिफ़ टूर्स बि तव्हांजा आहिनि। त जेको असां 15 अक्टूबर आलमी ॾींहुं आहे असांजे नाबीननि जो, ब्लाइंड दोस्तनि जो आलमी, उन्हनि खे तव्हां कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदव? हिमथ न हारींदव या तालीम हासिलु कंदव, कंहिंजे अॾो हथ न टंगींदव, छा चवणु चाहींदव उन्हनि खे, दोस्तनि खे पैगाम कहिड़ो हूंदो?
1: पहिरियों पैगाम त मां इहो उन्हनि नाबीन दोस्तनि खे चवणु चाहींदुमि जेके हथ टंगींदा आहिनि,
0: जी जी,
1: उन्हनि लाइ इहो पैगाम आहे त तव्हां हथ न टंगियो, तव्हां पंहिंजी हिमत कयो, तव्हां रोज़गार बि करे था सघो, हर शइ करे था सघो, सिर्फ़ु हिमत ऐं हौसलो हुजे। ऐं ॿियो पंहिंजे नाबीन कम्युनिटी जे हवाले सां मां इहो पैगाम ॾियणु चाहींदुसि, छाकाणि त असांजे लाड़काणे वारे नाबीननि बि काफ़ी पाण खे साबित कयो आहे, हिमत रखो इनशाला, जेको आहे जेतिरी असां कोशिशि कंदासीं, काविश कंदासीं, ओतिरो आम सोसाइटी जेकी आहे उनमें नाबीननि जे हवाले सां शौर पैदा थींदो।
0: तमामु बहितर, यानी माज़ूरी मजबूरी न आहे, कंहिंजे अॻियां हथ टंगणु ग़लति ॻाल्हि आहे, पंहिंजी माण्हू महिनत करे कोशिशि करे। ऐं अनवर अली धूण, तव्हां ॿाराड़े सां तालुक रखो पिया, ॻोठ सराई मोहम्मद नवाज़ धूण तालुको ऐं ज़िलो लाड़काणो, तव्हांजी वॾी महिरबानी अनवर धूण, लख गुरब तव्हांजे पसंद जो असां कलाम जेको आहे सन मारी जो हलाए छॾियो आहे। ऐं तव्हांजी वॾी महिरबानी, असांजे GFM 88 जे नेटवर्क तां प्रोग्राम आहे रोशन सुबुह, अवां टाइम ॾिनो, तव्हांजी वॾी महिरबानी। वॾी महिरबानी, लख गुरब। जी हा, समय असांजो अनवर अली धूण, जेको दोस्त पंहिंजो बिलाइंड आहे, अखियुनि खां नाबीन आहे, ऐं हुन पंहिंजी हिमत न हारी आहे, हुन पंहिंजी महिनत कई आहे, पंहिंजी कोशिशि कई आहे। ऐं तव्हां ॿुधो, ऐं जेके असांजा दोस्त बिलाइंड आहिनि, अखियुनि खां नाबीन आहिनि, अखियुनि खां महरूम आहिनि, ऐं उहो कॾहिं बि हथ न टंगनि। जेके दोस्त असां काफ़ी ॾिठासीं, रेडिया टेपिन जा मिस्त्री बीठासीं, ऐं कुर्सियुनि वाहिण वारा बीठासीं, ऐं कंप्यूटर जा माहिर बीठासीं, रांदियुनि जा माहिर बीठासीं। बहरहाल, माज़ूरी मजबूरी नाहे जे हवाले सां 15 अक्टूबर ॾींहुं हूंदो आहे आलमी ॾींहुं नाबीननि जो मल्हाइण जो, अखियुनि खां महरूम माण्हुनि जो मल्हाइण जो। ऐं असांजो दोस्त अनवर अली धूण असां सां लाइव कॉल ते मौजूदु हो, अवां हुन जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, अवां खे उमेदु त पसंदि आई हूंदियूं।

जी हाँ समय प्रोग्राम रोशन सुबह जारी सारी है तवाजो असो साथ रहो ठीक यारह वगे ती इन वक्त पा हल्दी न्यूज़ ब्रेक कमर्शियल ब्रेक तरफ वरी वापस इंदी असा गुजर।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Hardiya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास GAFM 88 की आवाज
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: Brought to you by
6: Super White's Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.

जी अज कौमी असेंबलीअ मां मंजूरी वरती वेंदी, गवर्नर राज जो फैसलो मजबूरीअ में वरितो, ॿियो को ऑप्शन न हो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त केपीअ में कारकर्दगी ॾेखारण बिना को ऑप्शन न आहे। केपीअ में गवर्नर राज जी मंज़ूरी रहा, पार्लियामेंट जो गॾियल फैसलो इजलास खमीस ॾींहुं तलब करण जो फैसलो कयो वियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास बाबति समरी सदर ॾांहुं मोकिली आहे। ज़रिए जो चवणु आहे त खमीस ॾींहुं थींदड़ इजलास मां केपीअ में गवर्नर राज जी मंज़ूरी वरिती वेंदी।

में मुल्क मां दहशतगर्दी जो खात्मो करे छॾियो हो। पीटीआई जी हुकूमत ॿीहर केपीअ में दहशतगर्दनि खे आबाद कयो। पार्लियामेंटी पार्टी खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त हुन लाइ सियासतदाननि वॾियूं क़ुर्बानी ॾिनियूं आहिनि। कुझु महीननि खां केपीअ जी सूरत इंतिहाई ख़राब हुई। केपीअ जे अवाम सदाई पाकिस्तान लाइ क़ुर्बानी ॾिनियूं आहिनि। मौजूदा हुकूमत बि दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर, आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
1: brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरा पर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरा पर, राब्ते जे लाए 03201800003।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट
6: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद, आईबा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120।
6: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
5: السلام علیکم ادا.
7: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
5: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
7: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا؟
8: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
5: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
7: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
8: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
7: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
9: 03013992836.
10: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

कयो वञे थो। जिना अस्पताल कराची, लियाकत मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, खैरपुर मेडिकल कॉलेज, गुलाम अहमद मेडिकल कॉलेज सखर ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणे जो अॻूणो चेयरमैन प्रोफेसर।

जी समय प्रोग्राम रोशन सुबह मां बुध पाया जी एफ एम 88 के नेटवर्क मां जो मेज़बान नेमत अल्लाह जुणे जो समय वहां के बुधाई तो हलां तो 14 अक्टूबर है पर सुभाणे जे हवाले सां सुभाणे 15 अक्टूबर है 15 अक्टूबर बियो वरी आलमी ॾींहुं आहे हथनि धोइण जो सॼी दुनिया में साल में 15 अक्टूबर ते सॼी दुनिया में हथनि धोइण जो आलमी ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे ऐं हीउ हिकु आलमी मुहिम आहे ऐं हिन ॾींहं जे मल्हाइण जो मक़सदु हथ धोइण जी अहमियत ऐं सिहत ते पवंदड़ असरनि वारी शऊर खे बुलंद करणु आहे हिन ॾींहं जे मल्हण जी शुरूआति सन 2008 में थी ऐं हथ धोइण इंसानी सिहत जो ख़ासि कमु आहे जंहिंजी अदा करण सां इंसानु केतिरनि ई बीमारियुनि खां बची सघे थो त साईं जा हथनि में नह हूंदा आहिनि नह बि हफ़्ते में इंसानु कटींदो आहे ऐं जेकॾहिं न कटण सां उन में मिटी पवंदी आहे जरासीम थींदो आहे ऐं मानी खाइण सां उन्हनि हथनि सां वात में उहे जरासीम वेंदा आहिनि त कोशिशि कयूं असां नहनि जा हथनि जा नह कटियूं ऐं पंहिंजा हथ धोऊं साफ़ु रखूं साबुण सां ऐं कोशिशि कयूं त पंहिंजे जिस्म जी सफ़ाई रखूं त असां काफ़ी बीमारियुनि खां पाण बची सघूं था त समय हाणे अवां दोस्तनि जा कुझु नाला खणंदासीं जेके असांजे प्रोग्राम ॿुधनि पिया जेके असांजे प्रोग्राम खे पसंदि कनि पिया उन्हनि दोस्तनि जा नाला खणंदासीं

जी समय असो प्रोग्राम बुधन पाया इर्शाद अली कोराई बेतलमाल कॉलोनी लाड़ेकाने का उस्ताद गुलबा और अबड़ो असो दोस्त बिलाइंड है जै फोन के मां भी अखिन का नाबीन आया दोस्त की वही मेहरबानी अब्दुल जब्बार नेहड़ो थरपारकर का यासमीन मलिक मीरपुर खास का इरम पहवर मीरपुर खास का मोहम्मद अजीज जरवार भी मीरपुर खास का भाईरन की वही मेहरबानी एस आए नूर मुस्तफ़ा भुट्टो उस्ताद वजीर अली जतोई एस आए मुगल खान तुर्क हाईकोर्ट लाड़काने का फकीर आमिर जिंजी नोटो थरपारकर का भा भी नाबीन है भा की वही मेहरबानी उन असे कॉल कर बुधा तो मां भी अखिन का नाबीन आया अल्लाह से तुम सभी के खुश कौ खालिक लाचारी जलोरी मीरपुर खास का कुर्बान अली खास किली झंडो मरी का आसिफ अली चाचड़ भी जो लाड़काने माहौटन का है वो भी नाबीना दोस्त उनकी वही मेहरबानी भा कॉल कई गुलाम रहीम बलोच मोहम्मद आलम बलोच झड़बी थरपारकर का फकीर एजाज अली कलड़ो डी एज ऑफिस लाड़काने का फकीर सौराब मंगरियो गोठ सचिरणो मंगरियो लगे बकापुर का डॉक्टर जुबेर अली मेमण गोठ खैरो देरो का इकरार एबर अबरार वकार अली जूणी जो गोठ ठुल जूणी जो गोठ मोलिन माशी लगे बकापुर का जमीर हुसैन सोलंगी मुख्तार अली सोलंगी नंढड़ो वफा हुसैन सोलंगी गोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर शोएब अली गुलाम रसूल कुंभर गोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो मोहसिन अकबर अहसन अकबर फहद अकबर अहद अकबर शादाब चांडियो यारमंद करोड़ा कॉलोनी लाड़काने खां फौजी इर्शद अली महेसर असो प्रोग्राम बुधन पाया भाईर की वही मेहरबानी फरजानाबार जो कलाम है दोस्त ना पाया क्यों

0: जी असां में प्रोग्राम रोशन सुबुह जारी उसारी आहे तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु यारहें वॻे ताईं हिन वक़्तु असां हलूं पिया कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ असां सां गॾु हुजो
1: चलते रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601100
4: अरे न खुश्क ऐं बेरोनो की स्किन हाँ इन्हीं जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन के कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक ख़ूबसूरती हर हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
5: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
6: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डी कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर

0: वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते। मेहराबपुर ऐं भरपासे जी आवाम लाइ खुशख़बरी पेट्रोल जे ख़र्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे ख़र्च खां बचो A1 आटोज़ पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज़ थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 आटोस मेहराबपुर नालो आहे एतमाद जो।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा
4: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
3: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94।

0: नाबीन आहिनि ऐं असांजा अखियुनि खां महरूम आहिनि। उन्हनि जो आलमी ॾींहुं हूंदो आहे, उन जे हवाले सां पहिरियां बि तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल करे चुका आहियूं त माज़ूरी मजबूरी नाहे जे हवाले सां तव्हां सां गुफ़्तगु बि हले पई ऐं दोस्तनि सां ॻाल्हि ॿोल बि करियूं पिया। हिन वक़्तु असां सां लाइन ते आहे अहिड़ो ई असांजो ब्लाइंड दोस्त, अखियुनि खां महरूम आहे ऐं पंहिंजो हवालो पाण ॾींदो। ऐं असदुल्ला अबड़ो असां सां लाइन ते आहे, साईं खे प्रोग्राम में भलीका चवंदासीं। असदुल्ला, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम सर।
0: असदुल्ला, ख़ुशि आहियो त भई? ठीकु आहे
1: अलहमदुल्ला, अलाह जा एहसान करम नवाज़ सर, शुक्रु अलहमदुल्ला।
0: तव्हांखे प्रोग्राम रोशन सुबुह ऐं जी एफ एम 80 जे नेटवर्क में अव्हांखे भलीकार पिया चऊं।
1: साईं तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी, जी एम एफ एम 88 जो नेटवर्क जे समूरे सत खे जेके जेके दोस्त असांखे ॿुधनि था, सभिनी खे दिलि जी गहराइनि सां मुंहिंजो बि सलाम हुजे क़बूल पए सर।
0: असदुल्ला भाउ, 15 अक्टूबर पंहिंजो नाबीननि जो आलमी ॾींहुं आहे, जेके असांजा दोस्त ब्लाइंड आहिनि, जेके अखियुनि खां महरूम आहिनि, उनजो आलमी ॾींहुं हूंदो आहे, उनजे हवाले सां मां छा चवणु चाहींदव?
1: असां एतिरो चवणु चाहींदासीं त वाइट कैन सेफ्टी डे 15 अक्टूबर ते अछे लकुन जे तहफ़ जो आलमी ॾींहुं आहे
0: जी।
1: ऐं इन मां मक़सदु इहो आहे त हीउ 1965 में अक़वामी मुतहिदा में इंटरनेशनली तौर ते हिन ॾींहं खे मल्हाइण जो हिकिड़ो सोचियो वियो हो ऐं 1965 खां वठी करे ही ॾींहुं मल्हायो वञे पियो। हिन ॾींहं खे मल्हाइण जो मक़सदु, सेलिब्रेट करण जो मक़सदु इहो आहे त असांजा ख़ासि करे उहे माण्हू जेके अखियुनि खां माज़ूर आहिनि ऐं जेके जेके माज़ूरीअ खे मजबूरी नथा सम्झनि ऐं उहे पिननि बि नथा, उहे कंहिंजे अॻियां हथु नथा टंगनि, उहे तालीम याफ़्ता माण्हू आहिनि, उन्हनि जा जेके फंडामेंटल राइट्स आहिनि, उन्हनि जा जेके बुनियादी हक़ आहिनि, उन्हनि खे उजागर करिणो आहे ऐं अछे लठ जे जी जेका अहमियत आहे उनखे जेको आहे उजागर करिणो आहे त हिन जी हैसियत केतिरी आहे। तव्हां जेकॾहिं अछी लठ वारे माण्हूअ खे ॾिसो त तव्हां उनजी हेल्प कयो ऐं उन खां अलावा ट्रैफिक जे कानूननि में ऐं जेको आहे हिन जो शुमार थिए थो त तव्हां किथे बि जेकॾहिं वाइट कैन ॾिसो था ऐं उहा मथे थी थी वञे त गाॾी वारे खे जेके ड्राइवर हज़रात आहिनि ख़्वा उहे कंहिं बि क़िस्म जी ड्राइविंग कनि था, उहे चिंगची था हलाइनि, का वॾी गाॾी था हलाइनि या नंढड़ी गाॾी था हलाइनि, असांखे भले साइकिल ई हलाइनि था पर ड्राइविंग कनि था, उनखे उन अछी लठ जो ख़्यालु रखिणो आहे छो जो इहा अमुन जी निशानी आहे। तव्हां उनखे ॾिसंदव त उनखे ऑटोमेटिकली ख़बर पइजी वेंदी त हीउ माज़ूर माण्हू आहे ऐं हिनजी मूंखे मदद करणी आहे ऐं हिन हिन हिन खां पुछा करिणो आहे त हिनखे कंहिं हेल्प जी ज़रूरत त कोन्हे का। उहो सिर्फ़ माण्हुनि में अवेयरनेस पैदा करण जे लाइ, माण्हुनि में मोटिवेशन पैदा करण जे लाइ त माण्हुनि जो जीअं माज़ूर ॿारनि ते हिकिड़ो तवजो शिकराइजे, इन जे करे ही ॾींहुं जेको आहे मतिलबु मल्हायो वेंदो आहे त माण्हुनि खे ख़बर पवे, जीअं उस्तादनि जो ॾींहुं हूंदो आहे, बीमा जो ॾींहुं हूंदो आहे, पेरेंट्स जो ॾींहुं हूंदो आहे, अहिड़ी रीति जेको ही ॾींहुं आहे हीउ अछी लठ जे तहफ़ जो आलमी ॾींहुं आहे त जीअं माण्हुनि में हिकिड़ी जागरूकता पैदा थी सघे त ही माण्हू बि अथव जेके मुआशिरे जो हिसो आहिनि, तव्हांजी शाना बशाना तव्हांजे ई मुआशिरे जो हिसो आहिनि, जंहिंखे तव्हांजे तवजो जी ज़रूरत आहे, हिननि ते तवजो ॾियो। जेकॾहिं हे बि तव्हांजे तव्हांजा शहरी आहिनि, तव्हां वांगुरु आहिनि, हिननि जो तव्हां ख़्यालु रखंदो त वरी अलाह साईं तव्हांजो बि ख़्यालु रखंदो।
0: असदुल्ला भाउ, तव्हां असांखे इहो बि ॿुधायो त तव्हां कहिड़े ॻोठ सां, कहिड़े शहर सां तालुक़ु रखो पिया, तालीम तव्हां किथां ऐं तव्हां केतिरी तालीम पिराई आहे तव्हां हिकिड़ो ब्लाइंड थी करे?
1: साईं मुंहिंजी जेका बुनियादी तालीम आहे उहा त चांडका स्पेशल एजुकेशन सेंटर लाड़काणे में माज़ूर ॿारनि जो स्कूल हुयो, हुते मुंहिंजी थी 8 दर्जे ताईं मां हुते पढ़ियुमि, पोइ 9, 10, 11, 12 नाओं ॾहों मां गवर्नमेंट सिंगल सेक्शन हाई स्कूल रतो देरो में पढ़ियुमि। मां बेसिकली रतो देरो जो आहियां ऐं 11, 12 जेको आहे उहो बि कॉलेज ऐं रतो देरो डिग्री कॉलेज में पढ़ियुमि ऐं उनखां बाद में पोइ मुंहिंजी आई आर में इंटरनेशनल रिलेशन्स में शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर मुंहिंजी दाख़िला थी वई ऐं उते उते मां A1 ग्रेड में मां पोज़ीशन होल्डर जेको आहे उतां जो आहियां ऐं उते उते मां जेको आहे मतिलबु त मास्टर कई इंटरनेशनल रिलेशन्स में ऐं उन खां अची करे पोइ वरी बि मुंहिंजो अञा पढ़ाईअ खां पेट जो न भरियो त पोइ वरी सिंधी अदब सां बि मुंहिंजो थोरो घणो चाह हुयो, प्यारु हुयो ऐं शाइरनि खे पढ़ियोसीं, अदीबनि खे पढ़ियोसीं, उन्हनि सां गॾु रहियासीं ऐं रेडियो जो बि दौरु हुयो, रेडियो में बि मूं 10 साल खनि कमु कयो, रेडियो पाकिस्तान लाड़काणो में।
0: तव्हां कंपेयर रहिया आहियो?
1: बिल्कुलु बिल्कुलु मां कंपेयर थी रहियो आहियां त पोइ वरी मां हिकिड़ी मास्टर जेके आहे हिकिड़ी एम ए मां सिंधी अदब में बि कई हुई, माना मुंहिंजी हाणे डबल एम ए थियल आहे, एम ए इंटरनेशनल रिलेशन्स में ऐं एम ए जेको आहे मुंहिंजी उहा सिंधी अदब में थियल आहे।

0: रिसेंटली अॼुकल्ह तालका हॉस्पिटल रतो देरो आहे, मां हुतां जो सरकारी जेको आहे नंढो मुलाज़िम आहियां, शुक्र अलहमदिल्ला अलाह साईं मूंखे मोथाजीअ खां बचायो आहे। मुंहिंजी शादी थियल आहे, सत ॿार आहिनि मूंखे, चार पुटड़ा टे नियाणियूं आहिनि। ॾिसो मां दोस्तनि खे हिकिड़ो मैसेज ॾियणु चाहियां थो, नेमत उहो इहो ई त ॾिसो त मां हिकिड़ो अखियुनि खां नाबीन माण्हू आहियां, पर अलाह साईं मूंखां इहो कमु वठे थो त ही जेके बि अखियुनि वारा तोखे ॾिना आहिनि, सत मुंहिंजा ॿार आहिनि, मुंहिंजी वाइफ आहे, आओ आहियां असां अठ नव भाती आहियूं, इन्हनि सभिनी खे सर्वाइव जेको कयां थो उहो अलाह साईं मूंखे हिकिड़ो ज़रियो बणायो आहे जेको आहे थो, त माना रब आहे पोइ जंहिंखां जेको कमु वठे। हीअ नंढड़ी हिकिड़ी ज़िंदगी जी जेको आहे मतिलबु त इहा असांजी कामयाबी आहे, असां कॾहिं बि पंहिंजो पाण खे असां पंहिंजी माज़ूरी खे पंहिंजी मजबूरी न
1: सम्झियोसीं,
0: ज़िंदगी जे हर चैलेंज खे क़बूल कयोसीं।
1: तव्हां पंहिंजो रांदियुनि खे बि टाइम ॾिनो?
0: ॾाढियूं साईं रांदियूं खेॾियूंसीं, ख़ासि करे क्रिकेट जे हवाले सां क्रिकेट खेॾीसीं, टेबल टेनिस
1: खेॾीसीं,
0: ऐं ॿी हिकिड़ी ॿियो वरी पाण में क्लास में वेठा हूंदासीं त तास रांदि बि खेॾंदा हुयासीं, लुडे जंहिंखे छके चवंदा आहिनि उहा रांदि बि जेको आहे खेॾी, छिल ॿार जेके आहिनि ख़ासि करे माज़ूर ॿार ऐं उहे जेके अखियुनि खां नाबीन माण्हू आहिनि उहे बि काफ़ी अहिड़ियूं रांदियूं आहिनि जेके खेॾंदा आहिनि उहे असां बि खेॾियूंसीं।
1: अच्छा, हिन में को तव्हांजो ब्लाइंड जे उहिदे में को तव्हांजो उहिदो हुजे, ब्लाइंड जी जेका तनज़ीम आहे या को रांदियुनि जो जी तनज़ीम आहे उन में को तव्हांजो उहिदो?
0: माज़ीअ में त आउं पंहिंजी टीम जो कैप्टन थी करे रहियुसि, हिन वक़्त में जेको आहे सो हाणे मां टीम जो में खेॾंदो आहियां ऐं पर मां पंहिंजी टीम जी तक़रीबन कोचिंग वारी साइड ते घणो ख़्यालु कंदो रहियां छो जो हाणे थोरी उमिरि मुंहिंजी तक़रीबन 45 ॿार मुंहिंजी उमिरि आहे,
1: त
0: वरी हाणे वरी मुंहिंजी दिल्ली चवंदी आहे त जेको न्यू टैलेंट आहे वरी हुनखे पॉलिश कयूं था, उन्हनि जी कोचिंग कयूं था, उन्हनि दोस्तनि जी प्रैक्टिस कराईंदो आहियां बिल्कुलु। ऐं उन खां अलावा बाक़ी पंहिंजे हवाले सां त असांजी हिकिड़ी तनज़ीम आहे पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ दी ब्लाइंड डिस्ट्रिक्ट ब्रांच लारकाणो, मां हुनजो साबिका ॿ भेरा जनरल सेक्रेटरी थी रहियो आहियां, हुननि जी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो मेंबर थी करे जेको आहे रहियो आहियां, हिन वक़्त बि मां हुननि जो जेको आहे मतिलबु त हिकिड़ो नंढड़ा अदना ख़ादिम आहियां, मेंबर आहियां, हुते ख़िदमत गुज़ार आहियां, हुननि जी अञा ताईं बि ख़िदमत असां कयूं था पिया।
1: असदुल्ला, तव्हां खां असां आख़िर में दोस्तनि लाइ जेको पैगाम हूंदो आहे पैगाम वठंदासीं ऐं अव्हां जी फरमाइश बि ज़रूरु ॿुधंदासीं।
0: फरमाइश त असां ईअं चवंदासीं त जेकॾहिं असांखे तव्हां मंज़ूर सखीराणी ॿुधाईंदव
1: जी जी
0: त ॾाढो जेको आहे भलो रस्ते रोक न करो यार, रस्ते रोक न कर, इहा शइ जेको आहे बाक़ी पैगाम पैगाम असांजो प्यार आहे, मोहबत आहे, हिनखे वधायो पोइ जेसिताणी पुॼे थो होसिताणी पुॼायो। प्यार ज़िंदाबाद, इश्क ज़िंदाबाद, मोहबत ज़िंदाबाद, मोहबतूं वंडियो, ज़िंदगी हिकिड़ो भेरो ई मिली आहे, ॾिसो मौत जो ज़ाइको त हर कोई चखींदो बाबा, उहो सभु कंहिंखे अलाह साईं ॿुधायो आहे त मौत जो ज़ाइको चखींदो, पर ज़िंदगी जो ज़ाइको बि त चखणो आहे न, ज़िंदगी जो ज़ाइको जेकॾहिं कंहिंखे बि चखणो आहे त पोइ मोहबतूं विरायो, मोहबतूं ॾियो, मोहबतूं वठो, मोहबत ई आहे जेका विराइण सां वधे।
1: हक़ीक़त आहे, हक़ीक़त आहे, ज़बरदस्त। तव्हांजी असदुल्ला भाउ वॾी महिरबानी असांजे GFM 88 जे नेटवर्क खे ऐं प्रोग्राम रोशन सुबुह में तव्हां टाइम ॾिनो, तव्हांजी वॾी महिरबानी, लख कुर्बा।
0: वॾियूं महिरबानी तव्हांजो बि, लख थोरा करोड़।
1: वॾी महिरबानी जी असमिन असांजो दोस्त, तव्हां पंहिंजो ॿुधो असदुल्ला अबड़ो जेको अखियुनि खां नाबीन हो ऐं ब्लाइंड आहे, हुनजी जेका हिमत अफ़ज़ाई, हुनजी जुस्तजो, हुनजी तालीम, हुनजी विंदुर ऐं हुनजी जेका गुफ़्तगू अवां ॿुधी तमामु बहितरीन, ऐं हुनजो पसंदि जो कलाम आहे मनदू सखीण आवाज़ु, रस्ते रोक न करो यार, रस्ते रोक न कर, सभई ॿुधी गॾिजी इंजॉय पिया कयूं।

अजी समय कुछ दोस्त जो नाला अवं तई पहुंची हल्दी रुस्तम अली पंवर गोठ पुनो पंवर सेवण का असो हाफिज नईमुल्ला हाफिज अमीनुल्ला पन वाकिल का कॉल कई उनकी वही मेहरबानी मोहम्मद खान चांडियो रेलवे कॉलोनी कोटड़ी का फतेह मोहम्मद कनासरो फराज अहमद फारूक अहमद सैद अहमद शाह फोन कई है गोठ सराई मोहम्मद नवाज धूण का दुआ कॉल कई है लाड़काने का उनकी वही मेहरबानी रांझन कोरी कोरी गोठ का वासफ अली बुगटी लाड़काने का अल्ताफ जरवार मीरपुर खास का असा ब्लाइंड दोस्त हैं हाफिज लखमीर ढिलू हाफिज सावल ढिलू ए बई भायर असा दोस्त मोरे का कॉल कई बई भायर नाबीना महबूब अली भी भा मोरे का कॉल कई भा की वही मेहरबानी नूर सिंह तुन्यो बदीन का असो रामचंद कुमार नोटो थरपारकर का नज़ीर खोसो सोबतपुर बलूचिस्तान का मोहम्मद खान कुंभार हालेपुटा स्टाफ मीरपुर खास का असा भायर हैं वासफ अली बुगटी लाड़काने का असा भायर जी ब्लाइंड जोहेब कटबर ए बिलावल कटबर ये भायर नाबीना इन जो भेनर भी नाबीना सीमा रुखसाना भी नाबीना उनका मामा उन्होंने बुधा असा मामा भी जे असि मासी भी है वह भी जो सो ब्लाइंड है नाबीना है अहमद नवाज कटबर तारिक कटबर फरहान कटबर ए लैला जो है सो लैला परवीन भी भेण असा नाबीना है उनकी वही मेहरबानी प्रोग्राम में शामिल थे सभी दोस्त नाव से जो कलाम हलो है मंजूर सखीरण जो रस्ते रोक न करो यार गर्जी बुदों पा इंजॉय क्यों।

अजिया समय प्रोग्राम जा आखिरी लम्हा मोकलाइंदासीं असां खां कुझु दोस्त रहिजी विया अल्ताफ जरवार रियाज जरवार मीरपुर ख़ासि खां भाइरनि जी बि वॾी महिरबानी हुनजा लख गुर्ब समय मंज़ूर सखीरण जे इन कलम ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक़्तु पहुची वियो पंहिंजी पुॼाणी ते हयाती बख़ैर इनशाला अवां सां मुलाक़ात वरी ज़रूरु थींदी तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमत अलाह जूणे जो ॾींदा इज़त अलाह निगाहबान।

0: It's 11 a.m.
1: Glowing Iskindo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. Glowing Iskindo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream.
5: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: Purkhas.
2: अब आप सुनेंगे जीए
7: सऊदीअ जे शहर ज़ोरान में आयल कंपनी आरामको जे हेडक्वार्टर भरिसां धमाको सऊदी ताज़ोरान में मिज़ाइल हमिलो नाकाम बणाए छॾियो तर्जमान मूजिब मिज़ाइल जो मलबो शहरी इलाइक़े में किरियो आहे जंहिं सबब 15 घरनि खे नुक़सान पहुतो आहे सऊदी तादी फोर्सिस पारां हुसन ख़िलाफ़ स्पेशल ऑपरेशन शुरू करण जो ऐलान

हैदराबाद के मक्की शाह थाने के हद में हथियार बंद नौजवान के कतल कर छोड़ो। पुलिस मौजूद मोटरसाइकिल सवार टिन जन नौजवान रोशन अली के फायरिंग करे कतल किया।

बख्शा पर भरसा औरत जो पुरसरार नमूने घर मां लाश हथ कतल जा चोबोल गोठ फौजली मज़ारीअ में बशीरा मज़ारीअ जो लाश मिलियो इलाइक़े में चोबोल आहिनि त औरत खे कार इल्ज़ाम मड़े क़तल कयो वियो आहे पुलिस लाश ज़रूरी कार्रवाई लाइ इस्पताल मुंतकिल करे छॾियो सिराड़ी भरसां रेलवे लाइन ते शहदादपुर जे डीएसपी मीर मोहम्मद मंगरे जे नौजवान पुट जो टुकड़ा थियल लाश हथ लाश जा टुकड़ा हिकु कपड़े में विझी एम्बुलेंस ज़रिए पीपल्स मेडिकल इस्पताल नवाबशांदा विया पुलिस जो चवण आहे त नौजवान वसीम मंगरे जे लाश जा टुकड़ा ट्रेन हादसे में थिया आहिनि खुदकशी आहे या को ॿियो वाकियो पेश आयो आहे इन बाबति जांच करण खां पोइ ख़बर पइजी सघी।

तो जिन लोगों की आज सालगिरह है उनको कहेंगे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून। और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें, आमीन। इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शबारों, शहरों और शराहों, वादियों और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजारों, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरी वरस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है, तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम, अहलन वसहलन, मरहबा बखैर, आगे ले जी आयानु सब बिस्मिल्लाह बोंजोर शामी हा एंड वेलकम इनटू जिंदगी गुलजार है। प्रोग्राम में बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, वो सारी बातें करेंगे आपसे जो आप हमसे करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम का पहला गाना, और इस गाने के साथ आपको बताएंगे प्रोग्राम में आगे क्या होगा। जिंदगी गुलजार है।

आगे जो प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, तीन तरह का कार्ड से आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 8881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है, दैट इज www.facebook.com/GFM88 के पेज के ऊपर लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग मिलती है. लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग नहीं बल्कि आज आपको पोस्ट मिलेगी, ठीक है. तो हर वेनसडे वाला जो प्रोग्राम है वो स्पॉन्सर्ड नहीं होगा, ठीक है. तो इस चीज को देखते हुए जो वेनसडे वाला शो है उसकी पोस्ट अपडेट हुआ करेगी फेसबुक के ऊपर, जहां पे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है. तो ये होगा. इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. और इसी के साथ हम मूव कर रहे हैं एक और गाने की तरफ. और इस गाने के साथ हम कहां जाएंगे? इस गाने के साथ हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब. सो आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आज
2: ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ

0: वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा बेहतरीन सर्विस जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत साइकिल जी कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन की तमाम फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592-120
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: प्लान के मिनरल्स खरा निखरा चेहरा व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 ऑटोस मेहराबपुर नालो आहे एतमाद जो
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो

0: मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मिरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
1: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
0: ऑफिस जी मिरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मिरापुर।
2: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
3: 03013992836
0: मोहम्मद उमेर गोरी 03119155724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: मुझे कॉल करेंगे और गाना सुनाएंगे, क्योंकि हमारा सेगमेंट है सिर लगाओ गाना सुनाओ, और सिर लगाओ गाना सुनाओ में आप लोगों की लाइव कॉल्स को रिसीव करेंगे हम। तो फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल मेरे साथ लाइन पे मौजूद है। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: जी बाजी रुखसार, आशिक हुसैन कार।
0: ओके जी, कैसे हैं भाई, ठीक ठाक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कर रहे हैं। आप सुना, आप कैसे ठीक ठाक हैं?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बताइएगा, प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: हाँ जी बिल्कुल, प्रोग्राम बहुत अच्छा चलता है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है।
0: ओके, गाना सुनाएंगे, गाना लेकर आए कोई?
1: हाँ जी जरूर सुनाएंगे।
0: तो सुना दें,
1: बरकत भट्ट का आवाज है।
0: हम्म,
1: शाम जो ही पर नाव सांजे कयो, हो शाम जो कयो कुछ तई न कयो, हो कुछ तई न कयो, हो शाम जो ही नजारो नाव सांजे
0: कयो। किसको किसको डेडिकेट कर रहे हैं?
1: यो डेडिकेट आवा दे कंदा से इन तलावा जे कृष्ण दा समा तो बदन वैसे बिन प्याज का कहां तरफ। अस्सलाम वालेकुम।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। और भाई का गाना हम प्ले करेंगे, और शाम जो ही पहर ये वाला गाना, और ये वाला गाना मैं देख रही हूँ कि मुझे मिल जाए, और गाना में और क्योंकि बहुत सारी और लाइव कॉल्स भी लेंगे, स्टे ट्यून। लेकिन मैंने तो लेटेस्ट वर्जन में प्ले किया था, ये कौन सा हो गया, और हम न्यू प्ले करेंगे, ठीक है? सो

0: ओके जी, नेक्स्ट कॉलर लेने जा रहे हैं. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: सज्जाद बात कर रहा हूँ, मोरो से.
0: जी कौन? सॉरी,
1: सज्जाद मोरो से.
0: मोरो से? कैसे भाई, ठीक ठाक?
1: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: ओके, प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: माशाल्लाह जबरदस्त.
0: गाना सुनाएंगे?
1: जी जी.
0: ओके, कॉल ड्रॉप हो गई है अनफॉर्चुनेटली.

0: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: प्रोग्राम सुन रही हैं?
0: जी बिल्कुल सुन रही
1: हूं। गाना सुनाएंगी?
0: हाँ
1: सुनाऊंगी। सुना दें? आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। ओके जी, आई एम सो सॉरी ज़ैनब, लाउडली बात कर सकती हैं तो करें प्लीज।
0: बना दे बल ये तो आप ये फैड फला जवाब।

0: ओके जी, एक और कॉलर। हेलो,
1: अस्सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं?
1: मोरो से निखत बोलता हूँ।
0: मोरो से कौन?
1: मिठल
0: सॉरी,
1: मिठल
0: मिठल भाई, कैसे ही? ठीक ठाक।
1: बाकी अलग
0: प्रोग्राम सुन रहे हैं, गाना सुनाएंगे?
1: गाना
0: गाना जो आपको गाना आता हो। ओके, गाना गाने से पहले ही आपकी कॉल जा चुकी है। 0300011।

ओके जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग. सॉन्ग के साथ साथ हमें मैसेज किया है अमजद अली खोकर ने. अमजद अली खोकर सोनहारी फ्रॉम सोनहारी फॉरम से. अच्छा, और लिखा है कि जी शो वेरी नाइस, जिंदगी गुलजार है. आरजे रुखसार, हाउ आर यू? सॉन्ग सुनाए. क्यों नजर बदल गई यारा वे. ओके, मैं इसको सर्च करती हूँ. अगर तो ये पाकिस्तानी सॉन्ग है तो जरूर प्ले होगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा. डेडिकेट टू एस आर. ओके ओके. और इसके अलावा जी एक और गाना प्ले करते हैं, एंड गाना होगा बहुत अच्छा.

0: It's 12 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Supervibes Rice Collagen Beauty Cream.
5: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: जी लॉ मुझे हुक्म हुआ है जी के क्योंकि इसको
7: जी
6: देख लिया जाए। जनाब स्पीकर, ये ना सिर्फ पहले भी हम इसे एक सहर हासिल गुफ्तगू कर चुके हैं प्रोक्लेमेशन जारी होने के बाद, और इस ऐवान का इस्तेहकाक है, और इसीलिए ये आइन की रिक्वायरमेंट भी है कि ऐसी सिचुएशन में जब सदर मुमलिकत को ये
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: Brought to you by
5: सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69

0: वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिन ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अरे न खुश और बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहे में आहिन चावरन जो खूबियों ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चामरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि
4: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100
6: आ अंगन जी तू कयो गदी जी तू السلام علیکم ادا
7: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
6: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
7: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
6: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
6: مجھے دکان جی بے ڈرندی
7: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
6: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
7: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 03013992836
9: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

हाउ किड यू वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार हैं और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आकर मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और हमारा सेगमेंट बोलो तो माने जिसको हम करने जा रहे हैं. आज का टंग ट्विस्टर क्या है वो आपको बताने जा रही हूँ. आपने कहना है कि ठंडे ठार ठाकुर ने ठर ठराते हुए ठाठा मारा. ठीक है, ये कहना है ठंडे ठार ठाकुर ने ठर ठराते हुए ठिठराते हुए ठाठा मारा. ठीक है, इसको कहेंगे और इसको प्रैक्टिस करना शुरू करें. सो हम जो है ना आप लोगों की कॉल्स को रिसीव करेंगे और इतनी देर में जितनी देर में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम करेंगे ये कि आप लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स की तरफ चलते हैं और मैसेजेस और कमेंट्स की तरफ चलेंगे हम जो कि 8881 पे आप लोग मुझे सेंड कर रहे हैं. सो बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे कमेंट्स.

ओके, मैसेजेस हमें सेंड कर दिए हैं जी. अस्सलाम वालेकुम सहर, सॉरी सहर नहीं, शहर गुलाब लगारी रोड बाशिम खान रेन से, शायर गाजी खान रेन, रिजवान अली रेन, फैजान अली रेन और शहजाद अली रेंट. छोटी कुनैन जहरा आपका शो सुन रही है, आपका शो लाजवाब है, हम शौक से सुनते हैं. और इसके अलावा फायजा अली का गाना सुनना चाहते हैं जी. अमजद अली खोकर सोनहारी ने वंस अगेन हमें मैसेज किया, थैंक यू सो मच. और इसके अलावा महबूब अली मोरू सिटी से हमें सुन रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम.

0: सलाम।
1: वालेकुम सलाम।
0: कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: सावर चांदी खुदावर शहर का आरजी मैडम।
0: ओके, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं,
1: अल्लाह जी शुक्र।
0: प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: जी हाँ जी।
0: कौन सा?
1: बाजी रुखसार।
0: ओके, बाजी रुखसार का प्रोग्राम सुन रहे हैं। मुझे ये बताएं कि टंग ट्विस्टर सुना है?
1: नहीं
0: नहीं सुना। फिर क्या सुना है?
1: ये सुना है कि सुपरवाइजर का ये प्रोग्राम है।
0: वो होता है वेनेसडे को छोड़ के। आज वेनेसडे है ना, वेनेसडे वाले दिन सुपरवाइट नहीं होता, बाकी सारा वीक सुपरवाइट होता है, लेकिन वेनेसडे को हम जो है ना सुपरवाइट नहीं करते। ठीक है
1: ठीक है
0: ठीक है। अच्छा, और कुछ कहेंगे?
1: गाना बताऊंगा आपको।
0: गाना बताएंगे? गाने वाला सेगमेंट खत्म हो गया, मैं आपको गाना बताती हूँ, आप वो सुने। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। 03000113।

0: नेक्स्ट कॉलर. हेलो.
1: हेलो
0: जी, कौन कहाँ से?
1: हेलो.
0: अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? ओके, मुझे बताएं कि प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: जी हाँ जी हाँ.
0: कौन सा प्रोग्राम है?
1: बाजी झूठ नहीं बोलूंगा. जब घर मैंने थे स्टार्ट.
0: ओ ओ, जब भी आप कॉल करें ना, मेक श्योर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे प्रॉपर सिग्नल आ रहे हो. ठीक है, तब तो आपकी कॉल चल सकती है, अदरवाइज आपकी कॉल ऐसे ही जो है नेटवर्क की वजह से फेल हो जाती है. नेक्स्ट कॉल है. हेलो.
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? गाजी खान विंद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं
2: जी, अल्लाह का शुक्र करम है अल्लाह का.
0: माशाल्लाह माशाल्लाह. प्रोग्राम सुन रहे हैं?
2: जी हाँ सुन रहे हैं जी.
0: कौन सा प्रोग्राम है?
2: जिंदगी गुलजार है.
0: ओके वेरी नाइस. और टंग ट्विस्टर सुना है?
2: थोड़ा समझ नहीं आया मेरे.
0: समझ नहीं आया, मैं बताऊँ एक बार?
2: बता दे, समझ आता है बता दूँ.
0: अच्छा, आपने कहना है कि ठंडे ठार ठाकुर ने ठिठरते हुए
2: ठंडे ठार ठाकुर ने
0: ठिठरते हुए ठाटा मारा.
2: नहीं समझो, नहीं मेरे नहीं बोला जाएगा.
0: चले और कुछ कहेंगे?
2: थोड़ा पहले बताया करो ना, 12 बजे के टाइम तक तो ना याद कर ले.
0: ओके ठीक है ठीक है ठीक है. 12
2: बजे या जो डॉक्टर आता है ना उसे पहले बताया करो, तो बना याद कर फिर बोल लेगा. अभी
0: याद करके आएंगे. अच्छा, रट्टा फिकेशन. और कुछ कहेंगे?
2: और खैर खैरियत है?
0: हाँ जी, खैर खैरियत है.
2: तबियत कैसे आज सुना? तबियत तुम्हारा खराब था?
0: हाँ जी, मेरा तबियत खराब था लेकिन अब काफी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह. और बस आप दुआ में याद रखा करें कि मजीद और बेहतर हो जाए. ठीक है,
2: अल्लाह कुछ रखेगा आपको. ठीक है, अल्लाह तुम्हारे को.
0: ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज.

0: एक और कॉलर लेंगे. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: मोहम्मद आलम बात कर रहा हूँ, ग्राम कंदरा से.
0: मोहम्मद आरिफ कंदरा से पहली दफा?
1: मोहम्मद आलम कंदरा से पहली दफा. नहीं नहीं, दूसरी तीसरी बार.
0: ओके, प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: हाँ जी, जिंदगी गुजार.
0: टंग ट्विस्टर सुना?
1: वो तो सुना है पर पता नहीं लगा है.
0: पता नहीं लगा है, समझ नहीं आया है. मुश्किल है. अच्छा, मुश्किल है.
1: हाँ बस, जो सुन रहे हैं.

ओके जी, और इसके अलावा हमें मैसेज किया है सफदर बलोच ने, और सफदर बलोच हमें सुन रहे हैं. और सफदर बलोच लिखते हैं कि आप कहाँ थी इतने दिन? मैं यही थी इतने दिन, लेकिन मैं ऑन एयर नहीं थी इतने दिन, लेकिन अब तो मैं काफी दिन से ऑन एयर हूँ. ऑलमोस्ट कोई आज कोई 14th डे है और 14th ही डेट है, क्योंकि हमने प्रोग्राम को फ्रॉम 1st अक्टूबर से जो है स्टार्ट किया था, तो आज 14th अक्टूबर है, तो ऑलमोस्ट 14 दिन हो चुके हैं आज मुझे आते हुए. अब तो मेरा पूछना बनता है कि 14 दिन से आप कहाँ थे?

आगे इसके अलावा जी हम चलते हैं आगे और मेरे ख्याल से हमें प्ले करना चाहिए एक गाना और गाने के साथ हम आगे चलते हैं और लास्ट टाइम लिखी कॉलर भी इंटरटेन करेंगे 03000 double

ओके जी, इसी के साथ फाइनली हम लेते हैं इजाजत और आपसे मेरी चिटचैट होगी इंशाल्लाह कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजे. सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है. लिव सिंपल बट थिंक हाई. सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइंस आउट. टेक केयर, गुड बाय, बा अमानी खुदा, अल्लाह हाफिज.

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे
1: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि ते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-3385-69

0: आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तावन से। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं और खूबसूरती की दुनिया में कदम रखते जा रहे हैं। भाई साहब, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके चेहरे पर भी बहुत ज्यादा निखार आना चाहिए या फिर आपके चेहरे पर जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ने आप लोगों को परेशान कर दिया है, चेहरे के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपने कुछ ज्यादा नहीं करना, बस आपने डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर लेना है। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के यूज के फौरन बाद ही आप लोगों को इतने जबरदस्त इतने शानदार से प्रोडक्ट्स जब मिल रहे हैं तो उसका यूज कीजिए और आप अच्छा वाला जो है ना निखार हासिल कर सकते हैं और अच्छी वाली खूबसूरती भी हासिल कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और साथ में आपको डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है, यानी कि जब आप खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती हासिल करना चाहते हैं तो मुकम्मल तौर पर बनिए। डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिए और साथ में डी स्किन का फेस वॉश भी परचेज कीजिए। ओके जनाब, यहाँ पर बताएंगे तफसीलन बहुत सारी बातें, लेकिन आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए सवाल क्या होने वाला है वो सबसे पहले बताते हैं, ताकि अगर आप हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करें तो आपको टॉपिक पता होना चाहिए और आप काइंडली टॉपिक के ऊपर भी बात कर सके। ओके जी, तो आज के सवाल की जाने पाते हैं, तो आज मेरा आप लोगों से सवाल होने वाला है कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा जानवर है जो पानी में रहता है लेकिन वो मछली नहीं है। हाँ जी, और आप देखकर उसे बोलेंगे कि ये दिखता भी तो मछली की तरह है लेकिन क्या ये मछली नहीं है, लेकिन हाँ वो मछली नहीं है। आप मुझे बताएंगे कौन सा जानवर पानी में रहता भी है लेकिन वो मछली नहीं है और शायद दिखता भी मछली जैसा है लेकिन वो मछली नहीं है। आप मुझे बताएं जल्दी से, अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, पहली मरतबा सुन रहे हैं, रोजाना सुनते हैं या फिर आप घूरने वाले लिसनर्स यानी कि चोरी चोरी चुपके चुपके हमें सुनने वाले लिसनर्स, तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपने नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 2821 पर। ओके जी, 881 पर मैसेज भेजेंगे तो उसका मैसेज हमारे पास आ जाएगा। इसी के साथ साथ बाकी अगर आप हमें फेसबुक पर सुनने वाले हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं, तो जी ये लाड़का ना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, और अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। जल्दी से पेज पर आइए, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। कितने सारे यहाँ पर देखो लोग हैं जिन्होंने कमेंट तो कर दिया लेकिन पोस्ट को लाइक नहीं किया। अरे कंजूस हो, लाइक भी करना होता है। बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए। हाँ जी, ये बोनस पॉइंट हो जाएगा मेरे लिए। तो जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए और कमेंट करते जाइए और मुझे बताइए कि कौन सा जानवर है जो पानी में तो रहता है लेकिन वो मछली नहीं। उनखा अलावा तुम सी प्रोग्राम में शामिल आयो बाबा, बिल्कुल तुम प्रोग्राम में जी ना फीडबैक्स असा शामिल प्रोग्राम रखंदस, पर जिन जिन मानन अन्या ताई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के यूज ना ही कयो बाबा, तुम छो न कयो है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के यूज। अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के यूज न करण की वजह यह है तुम वर्त डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तुम करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल को नथिया है, तो उन्हें चलाए तुम करना तुम के नंबर्स बुधाया भाई, नंबर से मथा तुम राबतो करी वो जी तुम राबतो करी वा, तो तुम करीबी जनरल स्टोर से भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए वो। सो नंबर्स आए नोट करी वो, नंबर से 033-27-38-43-09 बड़ी 332 है 73-84-309 एंड बियो नंबर आहे 03-12-50-25-907 बड़ी 312 हां 50-25-970 ही नंबर्स आहे जेके तमा डायल करे पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सको था, बिना कहीं देरी जे बिना कहीं टेंशन जे बस तां नंबर्स दे राबतो कयो, तमा कॉल भी करी सको था, तमा मैसेज भी करी सको था, तमा बुधायो बाबा तारिक भाई वेठो आहे तमा जे इंतजार में, त केमल असना सोना लिसनर कॉल कन था आई एस ऑन जिला करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल करायो था, सो तमा भी थोड़ी हेल्प कराए वठना कयो असन जे पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो जे तमा के वठन में आसानी थे आई तमा जे आसपास जे मानन के भी खबर पवे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आने असन एरिया में भी मिलन था। ओके जी, जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और यहाँ पर बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम का हिस्सा है। उन्हें कहा अलावा अलीशा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, सबसे पहले पोस्ट पर मौजूद, कहती हैं कि हमें थाम के रखना, हम तेरे हाथ से छूटे तो बिखर जाएंगे, कहती हैं उन्हें जब देखते हैं तो बदल जाते हैं ये लहजा, जबान पे आ ही जाते हैं अदाएं शायरों जैसी, क्या बात है जी क्या बात है, लिखती हैं कि मैं तेरे ख्यालों से निकलूं तो जमाना देखूं, ओ यह गाल कही नहीं। आमिर राज पर हमारे साथ कहते अस्सलाम वालेकुम, पटीदन शॉप है, मेरी पटीदन पे शॉप है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम चला रहा हूँ। आबिद भाई ने अवेलेबल करवाई है, बहुत अच्छी रिजल्ट है। ओके जी, आसिम राजपर जो है वो उनकी पटीदन में शॉप है, तो वहाँ पर आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश मिल जाएगा। तो जितने भी पटीदन वाले लोग हमें सुन रहे हैं वो आमिर भाई के शॉप पर जाकर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। ऐसा ही ना आमिर भाई, वेलकम कहते हैं आपको। और हमारे इरफान सियाज साहब हमारे साथ कहते हैं ग्रेट प्रोडक्ट्स डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और गुड आफ्टरनून मैम आरजी, गुड आफ्टरनून टू यू सर। और जेन लिखते हैं कि पकड़ कर नब्स मेरी, डॉक्टर ने कहा अच्छा लड़कियों की भी नजर लगती है। कहते हैं कि माना कि तुझे कुछ भी नहीं चाहिए पर मैं तो मतलब ही हूँ, मुझे तो तू चाहिए। कहते हैं कि जो तुझे देखकर फिर किसी और को भी देखे वो तमाशाई है, तालिबे दीदार नहीं। सही कहा आपने। और अबू हनीफ अलबलोची हमें सुन रहे हैं, गुड आफ्टरनून वेलकम कहते हैं भाई। हजार भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम भाई जान, खुश आमदीद। मीर मुमताज अली जतोई, वालेकुम अस्सलाम। अदी तमाची सफा भलिया कहते हैं अल्लाह पाक तमाकी खुश रखे, हमेशा मुस्कुराईंदा रहो, माशाल्लाह बेहतरीन शो, जबरदस्त कंपेयरिंग। गुड आगा खान जतोई, लाड़काने खान, मीर मुमताज अली जतोई, मोहम्मद मुदस्सर, एस मुमताज जतोई भी तमा सकड़ा है। सभिनी की चौथा भली करे आया, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो मुमताज भा कोन मुखे बुधाए जो ऐं तव्हां जूं मोहबतूं आहिनि, तव्हां लाड़काने खां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पियो। तारिक भाई बि हमारे प्रोग्राम में मौजूदु आहे, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। और किशोर भाई कहते हैं कि सलाम अदा, आउं रेडी तयार, खुशबू बि लॻाए आयो आहियां। तोखे अचे पई खुशबू? वाकई मूंखे खुशबू अचे वरी हाँ जी। और हमारे साथ गुड आफ्टरनून, हाई हेलो सदरा मुस्कान जी, आप कैसे हैं? योर शो इज वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची, वेलकम कहते हैं जी आपको। अजनबी लड़का लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मुस्कान, ये सॉन्ग चलाना, मैं कोशिश करूंगी जी, गाने आपके लगा देंगे। वासु भाई हमारे साथ हैं, हेलो। मैं ठीक हूँ वासु भाई, आप कैसे हैं? आप ऐसा करें, सारे लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए, और साथ साथ मुझे बताइए कि भाई साहब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो चुके या नहीं, और आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं। क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे ना, तो सुनने वाली समाधा को भी पता चलेगा वाकई भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो कितने कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको जो रिजल्ट्स मिलते जा रहे हैं वो लोगों के साथ ना शेयर किया करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। लोगों को पता चले कि भाई साहब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो कितनी शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पर दर्दी दिल हमारी साथी, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? लिखती हैं गुड आफ्टरनून माय फेवरेट आरजे, कैसी हैं आप? मजे में जी, मजे में हूँ, आप बताएं? मजे में है। और कहती हैं नाइस वॉइस, ब्यूटीफुल, थैंक यू। दर्दी दिल ने लिखा है कि रूहे मन, ये बड़ी शायरी है तो इसको थोड़ी देर बाद ही पढ़ेंगे। और वहीद वफाई में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मां ठीक आया था, पांजा हाल अहिवाल जो तमा चेकअप बाद खां असां के जॉइन कयो आए सो मोहबतूं आइन तमा। दर्दी दिल कहती है चंदा मीरपुर खास एफएम नहीं चल रहा, बड़ी शिकायत लगाते हैं क्यों नहीं चल रहा। और वहीद वफाई कहते हैं इतना दर्द है क्या दिल में, फिर तो कहर हो गया, किसका किसके दिल में दर्द है इलाज करवाते हैं उसका। अच्छा उन्हें कहा अलावा आबिद भाई हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम आबिद भाई, आप ही की बात हो रही थी। आप भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बड़ी तेजी से अवेलेबल कराते जा रहे हैं, ऐसे ही अपना काम जो है वो कंटिन्यू रखिए, और जहाँ जहाँ पर लोगों को जरूरत है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वहाँ वहाँ पर पहुँचाइए, ताकि लोग जो है वो आसानी से परचेज कर सकें डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को। और मोहम्मद जमान भाई आ चुके हैं, मोहम्मद जमान भाई गुड आफ्टरनून, वेलकम कहते हैं आपको भी। और किशोर भाई कहते हैं कि अदा मेरे ख्याल में, ओके ओके ओके। अच्छा मोहसिन अली हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मोहसिन आपको भी वेलकम हो गया। और यहाँ पर आप बस हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और शामली प्रोग्राम हो जाइए, टॉपिक को फॉलो कीजिए, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। और यहाँ पर लेते हैं हम जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिए, संत रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाए।
1: It's 1:30 PM.

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई?
2: न अदा।
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुझे दुकान जी बेट हलंदी।
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: रابطे लाए हाकिम अली जिसका
5: 0301-399-2836।
6: भाऊ परेशान नथी लाड़काने में डॉक्टर प्रदीप कुमार लालवानी सूफी सतारी वैश्य ट्रस्ट तरफा
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा, जरूरी मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि भाई कई मरतबा हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगा चुके होते हैं लेकिन वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो ऐसा होता है कि वक्ती तौर पर हमें गोरा बना देते हैं, खूबसूरत बना देते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है जो कि हमारी खूबसूरती का ख्याल भी रख रहा है और हमें खूबसूरत भी बना रहा है, तो आपके पास यस डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की यही क्वालिटीज है कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हर स्किन के मुताबिक तैयार हुए हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है ना ये जनाब आप लोगों के लिए जो तैयार हुए हैं उसे मर्द हजरात खवातीन सब लगा सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ये भी खास बात है, सबसे बेहतरीन बात जो मुझे लगती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये मेडिकेटेड फार्मूला है और मेडिकेटेड जो फार्मूला होता है ना उसे आप सब लोग आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मेडिकेटेड फार्मूला है तो कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि इससे स्किन से रिलेटेड जितने डॉक्टर्स होते हैं ना उन्होंने मिलकर ये फार्मूला तैयार किया है, तो आप लोगों के लिए ये भी कोई टेंशन की बात नहीं हो गई कि भाई हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। आप बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिल्कुल शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर आप लोगों को मिल रहा है विटामिन ई बीट्स, अल्फा आर्बुटीन, कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन और माइक्रो बीट्स। ये जो तमाम चीजें हैं ना ये ऐड की गई हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। और वाकई जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो आप पाकिस्तान में इतने सारे फार्मूले देखते हैं, क्रीमें देखते हैं, आजकल को सब किसी को आपने देखा होगा कि भाई मैंने ये भी चीज जरा देखी थी कि दुकानदार भी आजकल जो है ना वो फार्मूले बनाकर लोगों को बेच रहे हैं। तो अगर आप इस तरह का कोई फार्मूला परचेज कर रहे हैं या फिर आप लोगों को पता नहीं कि वो जो फार्मूला तैयार कर रहे हैं वो किस तरह से है, अगर ऐसा है कि उसको फार्मूले को लगाकर दो लोगों को अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तो ये चीज बिल्कुल भी आप लोगों के चेहरे के ऊपर सूट नहीं हो पाएगी कि उसे रिजल्ट अच्छा मिला है तो हमें भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि जब तक उस प्रोडक्ट के अंदर मेडिकेटेड फार्मूले नहीं होते, उसके अंदर ऑल स्किन टाइप के लिए फार्मूले नहीं होते, तब तक वो आप सब लोगों को रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। तो अगर आप ही चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो ऑल स्किन टाइप के लिए हो, मेडिकेटेड फार्मूला हो और हर स्किन के लिए सेफ हो, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन टाइप या फिर नॉर्मल हो, तो हर स्किन के ऊपर यूज किए जाने वाला प्रोडक्ट है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और इसके अंदर ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स है ना, इसकी जो एडिशन रखी गई वो इसलिए रखी गई है ताकि आपका जो ये रिजल्ट है ना आपको रिजल्ट 10 गुना ज्यादा मिले और फेशियल वाला रिजल्ट मिले, क्योंकि कई मरतबा हम ये सोच रहे होते कि भाई काश हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जो हमें लगाने के लिए जो है ना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, पैसे भी ज्यादा नहीं हमारे खर्च, बस हम लगाएं तो हम खूबसूरत हो जाए, वो भी सिर्फ और सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से। तो जनाब आपके पास मौजूद है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, सिर्फ दो रातों का यूज कीजिए और आप अपने चेहरे पर देखेंगे एक हसीन सा निखार, एक खूबसूरत सा ग्लो और आप हो जाएंगे सबसे ज्यादा हसीन, चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन, सब लोग ही लगा सकते हैं और खूबसूरत हो सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में शामिल कीजिए जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन के रूटीन को मजीद खास बना देगा, आपकी स्किन साफ सुथरी हो जाएगी, अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रहेगी और आपकी जल्द की जो शख्सियत है ना उसमें ताजगी आ जाएगी, आपका एतमाद भी बढ़ जाएगा। और अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन को ज्यादा खास बनाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते जाइए। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये भी बात है कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लगाना कैसे है, लेकिन साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज आप लोगों के लिए वाजे हो जाती है कि डी स्किन फेस वॉश जो है ना ये आप लोगों की स्किन को डीपली क्लीन करता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जितने भी आप सोप वगैरह लगाते हैं या फेस वॉश लगाते हैं उसमें जो असर आपको मिलता है ज्यादातर ऐसा होता है कि जब सर्दियों का सीजन आ जाता है तो आपकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है या इस तरह का कोई सीन हो जाता है, आपको लगता है कि सर्दियों में कुछ अलग ही लगाना चाहिए, कोई अलग ही प्रोडक्ट का हमें जो ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इस मरतबा सीन जरा चेंज होने वाला है क्योंकि आप इस मरतबा डी स्किन का फेस वॉश लगाने वाले और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना चाहे आप सर्दियों में लगा रहे हैं चाहे आप गर्मियों में लगा रहे हैं तो आपकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहेगी। जो आप सर्दियों में देखते ना कि हमारी स्किन ऐसे ड्राई सी हो चुकी है, उसके ऊपर अलग से आपको लोशंस लगाने पड़ रहे हैं, मॉइस्चराइजर्स लगाने पड़ रहे हैं, तो जब आप डी स्किन का फेस वॉश ट्राई करते हैं तो आपकी स्किन जो है ना

औरत का फोटो है, ठीक है, एक प्यारी खूबसूरत सी डॉक्टर है, उसका फोटो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की डब्बी पर है। तो आप ये देखकर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप यूज कीजिए, सारे लोग ही यूज कीजिए। भाई हमें बड़ी खुशी होती है जब आप आकर बताते हैं कि पाजी असा के डी स्किन ब्यूटी क्रीम भलो रिजल्ट दिनो है। असा चौथा तवा सभी के भलो रिजल्ट मिले आई तवा सब सोना थी वन। उनका अलावा अगर तवा पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराइन चाहियो था तो तवा जिला नंबर्स आए नोट करी वठना कयो ननते रातो कयो कॉल कयो मैसेज कयो एनन के बुधायो त तवा भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करन चाहियो था आई तवा जे करीबी जनरल स्टोर से भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वन। ओके जी, तो पहला नंबर है 03-12-50-25-907-312 50-25-907 नंबर आहे 033-27-38-43-09 डायल करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सको था। उनका अलावा दीपक भाई असो प्रोग्राम बुधे वो दीपक भाई हमें डेरा आला यार से सुन रहे हैं और दीपक भाई जो है ना वो हमारे बड़े अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर जो कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम सेल कर रहे हैं। और जो लोग हमें डेरा आला यार से सुन रहे हैं वो दीपक भाई की शॉप से जाकर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। डेरा आला यार वाले जितने भी लोग हैं ना वो आपको नंबर बता रही हूँ, दीपक भाई का ये नंबर है। आप जितने भी डेरा आला यार वाले लोग हैं वो दीपक भाई का नंबर डायल करके और उनसे भी जो है ना वो मालूमात ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है और कहाँ कहाँ पर अवेलेबल करानी चाहिए। ये नंबर भी जरा नोट कीजिए। ओके जी, नंबर है 03-12-46-111-90 बुड़ी 312 46-111-90 ये नंबर आहे दीपक भाई जो जेको तवा डायल कना डेरा अला यार वारन लिसनर्स लाया है। सो आप जरूर से इस नंबर के ऊपर राता कीजिएगा और दीपक भाई हमारे बड़े अच्छे हैं जनाब, वो आपको रिस्पांस देंगे और आपको बताएंगे कि कहां कहां से जाकर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश परचेज कर सकते हैं। और दीपक भाई के बेटे हैं जनाब मेहरवा, कितना खूबसूरत नाम है माशाल्लाह, वो भी हमारा शो सुन रहे हैं, दीपक भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया बंडल ऑफ थैंक्स, आप हमारे साथ मौजूद हैं और ऐसे ही आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट से मेहनत करते रहिए।

आप जितने भी सुनने वाली समाते हैं वो सब लोग डिजिस्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कीजिए। अब तो भाई मौसम भी तब्दील हो रहा है, तो आपको जरूरत है भाई साहब डिजिस्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, लाजमी जाइएगा, परचेज कीजिएगा। और जनाब जितने भी हमें सुन रहे हैं लोग, जो कि हमें सुनते हैं जनाब डेरा अलायार से, वो दीपक भाई का नंबर डायल करके अपने लिए जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि डिजिस्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं।

क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना आप इंजॉय करिए, साथ साथ हमारे साथ मौजूद रहेंगे पूरे पूरे 3 बजे तक। प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको खूबसूरत बना रहे हैं। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो लोग लगा चुके हैं उनसे पूछिए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कितना प्यारा कमाल का रिजल्ट उनको मिल चुका है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं, आप सब लोगों के लिए है। जी हमारे साथ हमारी दर्दे दिल लिखती है कि रूहे मन आंखें तेरी ताबे कर दी गई हैं, उनका खिल उठना मुरझा जाना तेरी नजर आने न आने से वाबस्ता है। तो मेरे लिए वही यूज्ड हो जिसके बारे में रब फरमाता है, ओके बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, हाँ तुम यूज्ड ही तो हो, आसानी सुकून और दुखों की गहराई निकल कर मिल जाने वाली रहत। अच्छा ओके ओके ओके। अच्छा ही हमारे साथ अबू हनीफ अल बलूची कहते हैं कि हे ढूंढती जिसको नजर मेरी वो तुम नहीं तो कौन हो, हे जिसका नाम जिंदगी वो तुम नहीं तो कौन हो, था जिसके वास्ते ये दिल दर्बदर रहा अब तक मेरे जहां में, वो कमी तुम नहीं तो कौन हो। क्या बात है, ये तो बढ़िया हो गया। अच्छा उन्होंने कहा अलावा हमारे साथ है आबिद भाई, कहते आमिर भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छी सेल कर रहे हैं। बिल्कुल जी, सारी टीम बड़ी मेहनत कर रही है, आप दीपक भाई को ही देख लीजिए, दीपक भाई जो है ना, दीपक भाई ने भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं जनाब, और दीपक भाई की मेहनत को सराहते हैं हम। और यहाँ पर जितनी भी भाई डी स्किन की टीम है ना, वो लगन से काम कर रहे हैं, बाकी जो सुनने वाली समाते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, ये तो वही बताएंगे। तो जितनी भी सुनने वाली समाज हमारे साथ मौजूद है, मुझे लाजमी बताया करें कि आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं या डी स्किन का फेस वॉश लगा रहे हैं, या फिर आप अभी तक सोच ही रहे हैं, क्योंकि जो लोग खाली सिर्फ सोचते रहते ना फिर वो सोचते रह जाते हैं। तो इतना मत सोचे, जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज कीजिए। अच्छा वही वफाई, पता नहीं हाँ हाँ मैं समझ गई बात आपकी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और ये हमारे साथ है जी गदा हुसैन मल्हा, कहते हैं बाजी मैं गदा हुसैन मल्हा विलेज अंदर खान मल्हा मोरो से, बाजी आज की टॉपिक शायद ओके हो गया। कहते हैं बाजी मैं आपका शो तकरीबन 4 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन वो जो आप कहती है ना घुनने वाले लिसनर्स, बस वही वाला हूँ मैं। और कहते हैं कि अंबाजी आज भले कुछ भी हो जाए, चाहे लिस्ट ही क्यों ना फुल हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे गाना सुनाना नुसरत अली खान का, मुझे इस शराबी, अच्छा चले मैं आपको ये गाना बिल्कुल आपको सुना दूंगी, भले लिस्ट फुल हो जाए लेकिन आपका गाना लाजमी चलाएंगे। और हमारे साथ ही अल्ताफ अली गादी बलोच कराची से कहते हैं, अच्छा टॉपिक का जवाब दिया है, बढ़िया हो गया। हिदायतुल्लाह अहमदानिया में सुन रहे हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं हिदायतुल्लाह। और हमारे साथ ही नजीर कुसुम भाई, ओके जी बलोचिस्तान से हमें सुन रहे हैं नजीर को सुभाई, बताएं जरा बलोचिस्तान में आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मुझे लगता है कि हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए, और जहां भी आप जाएं, कहीं भी आप विजिट करने जाएं, घूमने जाएं, ट्रेवल करने जाएं, तो वहां पर आप लोगों को हर करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आराम से मिल जाए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो, आप बस लगाएंगे और खूबसूरत हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से। क्या बात है, बढ़िया हो गया ना।

बहुत ही खूबसूरत सा गाना, बहुत ही हमारे खूबसूरत लिसनर्स एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ आप सुन रहे हैं जनाब वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। यहाँ पर मोहम्मद जमान, आपने टॉपिक का जवाब दे दिया, ठीक हो गया जी। जुबेर सरवर हमारे साथ है, जुबेर सरवर लिखते हैं फ्रॉम मोरो जी, रेडियो की दुनिया में हमें परिंदों सा दिल देकर परिंदों दरिंदों की बस्ती में उतारा गया है। खुश हो जो सदा सभी तमाम विभाग, खुश हो जो आई तमाम एड़ी भली नंदड़ी नंदड़ी दिल रखो। तो ये बात तो है ना कि जन्नत में तो वही जाएंगे जिनके दिल चिड़िया की जरा नाजुक होते हैं, तो ये अच्छी बात है, ये दिल जरा संभाल के रखिएगा। मुकुल उमरानी हमें सुन रहे हैं, आपको भी वेलकम कहा जाता है। और हया मानो हमारे साथ कहते हैं कि हम जैसे नहीं हो सकते आप हमारे अंदाज चुरा लेने से, ओ ईहा गाला बिल्कुल सही। और हमारे साथ हैं जी अल्ताफ अली गादी बलोच, कहते हैं हाय सदरा जी, एक तो जी जी आपका सवाल हमने देख लिया जवाब यानी कि, और अच्छा है आप हमारे साथ। मुझे बताएं जी इसकी ब्यूटी क्रीम लगाई या अभी तक खाली सोच रहे हैं। निजाम भट्टी कादरी हमारे साथ ही, वालेकुम असलम, मठियारी का तमाशा की ज्वाइन किया हुआ है। प्यारा भारत मुझे मोहब्बत हुआ तांगे प्रोग्राम पसंद अच्छी पे हजार भाई एंडो वंडो कमेंट लिखे अथव हल खत्म ही कौन दूसरे। ये जरा मुझे आप 5 बजे वाले प्रोग्राम में शेयर कीजिएगा यही वाला कमेंट, ठीक है। और गुलमीर हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। और हमारे साथ हैं जी गुलमीर भाई, बिल्कुल आपकी पसंद का गाना लगा लेंगे। वक्त अली सियाल हमें सुन रहे हैं, भाई को वेलकम हो गया। अलीशा कहती है कि मामू परवेज के लिए थारो शाह में फेस वॉश अवेलेबल करवा दें डियर सिडो। जी जी फेस वॉश भी हम जो है ना वो अवेलेबल कराते जा रहे हैं। फेस वॉश जो है ना वो थोड़ा ऐसा है कि वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम पहले आई और फेस वॉश जो है वो अभी अभी इन होता जा रहा है मार्केट के अंदर, तो जहां जहां पर फेस वॉश की कमी है तो आप बताइए ताकि हम वहां वहां पर फेस वॉश भी आप लोगों के लिए अवेलेबल कराते रहे, ताकि आप लोग दोनों चीजें साथ में लगाकर आप अच्छा वाला जो है ना वो निखार हासिल कर सके। और किशोर भाई कहते हैं कि अदा हाँ एक हाँ लिंक मोकलियां तो अगर मुझे जवाब सही हो जाए। हलाई दता जो गानो। और स्मार्टो भोपाल कहते हैं हाय वालेकुम अस्सलाम, माय फेवरेट आरजे सदरा मुस्कान, आई एम लिसनिंग योर शो इनकम्बर सिटी। ओके जी आपको भी वेलकम हो गया। फायजा का गाना कोई अच्छा सा सुना देंगे आपको, और आप जरा प्रोग्राम में बने रहिए हमारे साथ, एंजॉय करते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक। आप सुन रहे हैं जनाब वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करते रहिए। और टाइम हुआ है जनाब न्यूज ब्रेक का, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए, टॉपिक को फॉलो करते रहिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आते हूँ, सो यही रहिएगा। We'll be right back.

0: It's 2 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم 88 کی آواز
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
4: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب سکن کی کیئر کریں کل بارات پہ بھی جانا ہے تم سٹرابری والی वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
4: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
6: सुपर वाइट
7: हेल्पलाइन नंबर हैदराबाद रीजन 0370256831 और हेल्पलाइन नंबर सखई रीजन 0314775462
8: साईं कुछ खबर अथव
9: छा थियो सोणी
8: बिडियन खा सोलर वारी बैटरी खराब थी पई आहे नई बैटरी कदे आणींदा
9: सोणी इन महंगाई जे दौर में नई बैटरी जी जरूरत ही कोने पंहिंजी पुराणी बैटरी सरगोदा बैटरी सर्विस वारनि ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वञा उहे अधु क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओं करे छॾींदा
8: साईं पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब कोन थींदी
9: न न सोणी सरगोदा बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि बैटरीअ जी
8: वाह वाह पोइ साईं जल्दी करियो हाणे ई वञो ऐं बैटरी ठाराए अचो
9: सरगोदा बैटरी सर्विस तां पंहिंजे यूपीएस ट्रैक्टर ऐं सोलर वग़ैरह जी ख़राब बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे नओं बणायो

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: अरे न, खुश्क ऐं बेरोनक जी स्किन हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट, पर इहो कीअं? तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन, जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे, ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे। सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक ख़ूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: हेल्पलाइन नंबर हैदराबाद रीजन 0370256832 और हेल्पलाइन नंबर सखई रीजन 0314775462। खुश खबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वग़ैरह बाज़ार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
6: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
6: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
6: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
7: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
8: 0301-399-2836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

वाला है। थोड़ी सी नॉलेज होने चाहिए, अगर आप लोगों से कोई भी पूछता है या फिर खाली मैं ही कभी कभी पूछ लेती हूँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जो इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आगे जाकर फ्यूचर में करेंगे, तो आप लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल क्यों करेंगे। अगर ये सवाल कोई आपसे पूछे तो आपको ना उसका जवाब पता होना चाहिए कि हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्यों लगाएंगे। चाहे आप मर्द हजराती चाहे आप खवातीन, आप सब लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के ये फायदे आप लोगों को मिलते हैं क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक 2-in-1 फार्मूला है। यानी कि आप लोगों को पहले शायद इसके बारे में नहीं बताया कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये 2-in-1 फार्मूला है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई बीड्स हैं और माइक्रो बीड जो एड किए गए हैं ना, तो इससे हमारी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के जो रिजल्ट्स हैं वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। और हमारा जो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर फेशियल की क्वालिटीज भी एड रखी गई हैं। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो फेशियल वाले मिलते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये 2-in-1 फार्मूला है। यानी कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से बहुत अच्छे बहुत शानदार रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ना सिर्फ विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स हैं, बल्कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर अल्फा आरबुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है। ये तमाम चीजें मिलकर जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम को प्रीमियम फार्मूला बनाती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अच्छे से जानते हैं मेडिकेटेड फार्मूला भी है, तो ऑल स्किन के लिए सेफ भी है और ये आपकी स्किन की हिफाजत भी करता रहेगा। तो आप लाजमी से इस्तेमाल करके देखिएगा। खूबसूरती हासिल करना और खूबसूरती को मेंटेन रखना, ये दोनों चीजें बड़ी जरूरी हो जाती हैं। खूबसूरती हासिल तो आप वैसे भी कर लेते हैं, लेकिन उस खूबसूरती को मेंटेन रखना थोड़ा सा अजीब सा काम हो जाता है। क्योंकि अगर आप काम भी कर रहे होते हैं और काम करने के साथ साथ आपसे स्किन केयर नहीं हो पाते हैं, स्किन केयर अगर आप नहीं करते हैं सही से, तो आपकी स्किन जो है वो खराब हो जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपके चेहरे पर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप अप्लाई करें जो कि आप अगर इस्तेमाल करते रहें तो आपको जो खूबसूरती मिली है वो, अगर ऐसा होता है ना कि हम थोड़े टाइम के बाद प्रोडक्ट को यूज करना छोड़ देते हैं, तो उससे ये इफेक्ट आपके चेहरे पर ना आए कि भाई आपके चेहरे की स्किन खराब हो जाए। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के बाद आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो सिर्फ खूबसूरत होती रहेगी, खराब होने के तो चांसेस ही पैदा नहीं होते मेरी जान। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आप सब लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है, तो ये चीज भी याद रखिएगा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ अगर आप जाएं तो फेस वॉश लाजमी परचेज करके आए। और अगर फेस वॉश आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं है, जैसे हमें प्यारी अलीशा ने बताया कि हमारे यहाँ फेस वॉश नहीं मिल रहा है, उनके हाँ भाई बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, फेस वॉश नहीं मिल रहा, तो ऐसे ही आप भी बता दिया करें कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर कौन से प्रोडक्ट की कमी है, ताकि वो अवेलेबल करा दिया जाए और आपके लिए आसानी से हो जाए कि बस आप जाएं और परचेज करके आ जाए। तो ये चीज भी है, आप लोगों को नंबर्स बताए जाते हैं जिनके ऊपर आप रابطہ करते हैं और फोन करते हैं या फिर मैसेज करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप भी परचेज करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम को, और कहां से मिलेगी डी स्किन का फेस वॉश परचेज करना चाहते हैं कहां से मिलेगा, तो आपको बता दिया जाएगा या फिर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ओके जी, तो नंबर्स क्या होने वाले हैं, नंबर जरा नोट रखा करें। नंबर है, पहला नंबर है 0332738439। बड़ी 300 73 84 309। आई बो नंबर आहे 03 12 50 25 907। बड़ी 312 50 25 970। ये बई नंबर तुम डायल करे सको था, बाकी उन्हें मानन जे तरफ भी अचूं जेके भई असा के बुधन पया डेरा अला यार खा। डेरा अला यार भी हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है, बड़े जोरों शोरों से सुना जा रहा है। तो वैसे तो ये बात है कि डेरा अला यार में ना आप लोगों को हर अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर, मार्केट में, अपने किसी भी छोटे मोटे जनरल स्टोर्स में आपको डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये दीपक भाई ने अवेलेबल करा दिए हैं। हमारे बहुत अच्छे जनाब डिस्ट्रीब्यूटर हैं दीपक भाई, उनकी मेहनत को उनकी अजमत को सलामी जनाब। इतनी मेहनत से और शिद्दत से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल कराते जा रहे हैं। तो दीपक भाई ने डेरा अला यार में सब तमाम शॉप्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल करा रखा है। तो आप जरूर से अगर वहां से हमें सुन रहे हैं डेरा अला यार से, तो मार्केट जाइएगा, चक्कर लगाइएगा और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज कीजिएगा। लेकिन अगर वो लोग जो कि भाई नहीं चाहते कि भाई हमें नहीं पता कि कहां पर अवेलेबल हैं, कहां से मिल सकते हैं, तो आप लोगों को दीपक भाई का नंबर भी बता रही हूं साथ साथ, उसके ऊपर आप राबता कर सकते हैं। राबता करने के फौरन बाद ही दीपक भाई आप लोगों को गाइड कर सकता है कि आप कहां से जाकर परचेज कर सकते हैं।
कॉल करिए। सो नंबर है 03-1246-111-90 ये नंबर है जो कि दीपक भाई का है। आप डायल करके अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात ले सकते हैं कि कहां कहां पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। और जनाब इस वक्त दीपक भाई हमें सुन रहे हैं और उनके प्यारे बेटे हैं मेहरवा। मेहरवा इतना खूबसूरत नाम है, कसमें क्या बात है। तो उनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं। मेहरवा को और दीपक भाई दोनों को वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों की इतनी मेहनत शामिल है, तो आपकी जनाब मेहनत को अल्लाह पाक रायगा नहीं जाने देगा और ये मेहनत का आपको फल मिलेगा, इनाम मिलेगा। और आप ऐसे ही सच्ची दिल से, सच्ची मेहनत से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट से मेहनत करते रहिए। और बाकी जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है वो भी जनाब लगाकर अच्छी और खूबसूरत हो चुकी है, क्योंकि उन लोगों को पता है जो लोग डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं वो जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना एक मेडिकेटेड फार्मूला है। तो लगाने से ये भी चीज आप लोगों को टेंशन नहीं कि भाई हमारी स्किन खराब हो सकती है या फिर क्या मसला हमारी सेंसिटिव स्किन है तो उसके ऊपर हम नहीं लगा सकते। आप हर स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं, मर्द हजरात ही लगा सकते हैं, खवातीन ही लगा सकते हैं। और जनाब ये भी कोई टेंशन नहीं कि हमारी स्किन सेंसिटिव है तो हम लगाएं या ना लगाएं। कॉम्बिनेशन टाइप स्किन हो या सेंसिटिव स्किन हो, हर स्किन के ऊपर आप बिल्कुल लगा सकते हैं और हर मौसम में भी लगा सकते हैं। तो लगाते रहिए और खूबसूरत होते रहिए। और इनका अलावा प्रोग्राम जे बे कलाक में अच्छी वया है तो तमा के चौथा भली करी आया तमा जो मोहब्बत हुआ है बाबा तमा कनी कनी वाकी पानी हुजन जो सबूत नहीं सरी ना करे असा के खबर हो जे तो तमा जिंदा आयो। आई जेको अज मा तमा का सवाल पुछवा है, सवाल बिल्कुल आसान आई आसान खां भी आसान पुछवा है। तो तमा मुके बुधायो वो केड़ो जानवर आ है जेको पानी में त रहंदो आ पर वो मच्छी ना है। हां जी वो फिश ना है। आई हां तमा चवंदा त लगंदो त फिश जी आए पर फिश आ है कोन। तमाम बुधाए मुख्य जल्दी जल्दी 888-1-9 फेसबुक तमाम मुख्य ज्वाइन करना हलो जेरे तमाम जला डाडो भलो फायसाली जो गानो हलायो आ है फायसा जो गानो बुदू था। गाने से गडो गड तमाम जा कुछ मैसेजेस आए उन तरफ भी अचू था। तमाम पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हलो। आई ड्यू वाला वाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई कौन लगाई हाँ भाई उनका नाम ही इतना प्यारा है, देख लीजिए आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनके नाम की वजह से कितनी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना वो जान आ चुकी होगी।

ओके जी नखा अलावा मायरा सुने प्रोग्राम बुधे पई वालेकुम अस्सलाम मायरा तमान जो मोबतुआन बाबा प्रोग्राम बुधो पया डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल कयो पया दिल रु बाबी असा के बुधे पई दिल रुबा के चौथा बाबा भली करी आया ही दिल रुबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको आई परचेज करे वरती आहे एंड दिल रुबा जेको आ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल कर दी बिल्कुल तमा इस्तेमाल कयो आई पाजे खूबसूरती जो ख्याल रखना कयो सही

जी जी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना हमने एंजॉय किया. और ये बहुत ही प्यारा गाना हमारी लिस्ट में है जो कि AI वर्जन होने वाला है. ये गाना मैंने मतलब कल ही सुना था और मुझे ये लगा था कि ये गाना मैं कल अपने प्रोग्राम में लगाऊंगी. लेकिन इस गाने की फरमाइश आ चुकी है, किशोर भाई ने गाने की फरमाइश करी है, तो हम इस गाने को एंजॉय करेंगे. और साथ साथ जिन लोगों ने हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से कर दे और मुझे बताएंगे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल चुके हैं. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं या डी स्किन का फेस वॉश लगा रहे हैं, ये भी बताइएगा.

बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डेज स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तावन से। हिदायतुल्ला कहते हैं कि तुम्हारा आवाज साफ नहीं आ रहा है। अब मेरा आवाज साफ आ रहा है, मुझे बताएं।

0: करे।
1: क्या बात है जी, अगर तमां जी स्किन ग्रे क्रीम जो इस्तेमाल करना तो बाकी मानू तमां जी लाए भी नहीं चोना, तमां जी रेस बाबा केयर करे, तमां जी हुस्न जो जवाब ही कोड़ा है। आईडी स्किन ब्यूटी क्रीम का मर्द हजरात खवातीन सभी लगाए सको था। दर्दी तो लगती है कि इंसान की सबसे खूबसूरत दुनिया उसके ख्यालों की दुनिया होती है, क्योंकि वहां वो वही जिंदगी जीता है जो उसका दिल चाहता है, चाहे वो चंद लम्हों के लिए ही क्यों ना हो। यस, सही कहा आपने। हिदायत आपने भी जवाब दे दिया, ओके हो गया जी। अच्छा रमजान भाई हमें सुन रहे हैं, कहते सलाम बहना, वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। और आपने लिंक शेयर कर दी है, गाना आपको लगाने की कोशिश करेंगे। सोमाटो कहते हैं थैंक्स आरजे, इट्स ओके, डोंट वरी। उम्मीद अली लाशारी हमारे साथ है। उम्मीद भाई लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम प्यारी आरजे सदरा, केड़ा हाल है तमाम जा, प्रोग्राम तमाम सुठो आहे, मिरपुर खास जुलरी खां उम्मीद अली लाशारी, सलाम अदील अबड़ो चाचा खाले जुड़ी जो आरजे सुमेरा और फजली आरजे गुलनाज, प्लीज प्ले शमन मीराली। ओके जी, शमन तांजला हलाए वठूं था, शमन बाबा कारी कोन वेंदो तव्हां जे लाइ वेठो आहे सीट ते, पर हुन जो टाइम ईंदो त लाज़मी हुनखे हलाए वठूंसि था। तव्हां हिकिड़ो कमु कयो, मिरपुर ख़ासि में पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से हलिया वञो, उतां तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज़ करे अचो, ठीकु आहे।

हाँ भाई किशोर भाई देख ले, मैं वही सोच रही थी, मैंने ये सोचा था कि मैं ये गाना जो है ना वो लाजमी लगाऊंगी आज वाले प्रोग्राम में या शाम वाले प्रोग्राम में, लेकिन फिर मशीन आ जाती भाई आप लोगों वो है ना जरा कनेक्शन है भाई हमारे बीच में, डीज कंप्यूटर क्रीम का समझ रहे हैं।

अदर चने सर थी वो हमें सुन रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, जबरदस्त प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच प्यारा भा। वैसे इधर तो सारा सिस्टम सही है, अगर मैं कुछ करूंगी तो थोड़ा इधर उधर सीन हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है सही है सब। हिदायतुल्ला आप जरा उधर अपना चेक कीजिए, नेटवर्क का शायद इशू हो सकता है थोड़ा सा। और ये जी गुलाम अब्दुल गुलाम कैसर हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं प्यारे अंकल को, और आप हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से सुनते हैं, थैंक यू सो मच। आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप डी स्किन का फेस वॉश ट्राई करके देखिएगा। अच्छा फेस वॉश की ये ना खास क्वालिटी है कि फेस वॉश आप लोगों के स्किन के अंदर तक जाकर आपके चेहरे को डीपली क्लीन कर देता है। अगर आपकी स्किन क्लीन होती है तो जाहिर सी बात है आपके चेहरे पर ग्लो आ चुका होता है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि भाई अब हम कौन सा साबुन लगाएं कौन सा फेस वॉश लगाएं, क्योंकि ये चीज ज्यादा हमें ना परेशान कर देती है। तो बस आप डी स्किन का फेस वॉश अपने पास रख लीजिए, ट्रैवल करने की अगर आप शौकीन है तब भी आपके पास मौजूद रहेगा, बस आप कहीं पर भी जाइए डी स्किन का फेस वॉश साथ लेकर जाइए, इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए। यहाँ पर टाइम हुआ जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, जल्दी वापस आ जाते हैं, आप यहीं पर मौजूद रहिए, मैं यूं जाकर यूं वापस आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो।

0: It's 2:30 PM.
1: Irshad Autos and Honda Showroom Mehrapur. Honda Motorcycle Jupur Aitmat and Ba Akhtiar Idaro. Irshad Autos and Honda Showroom Mehrapur. 9 Motorcycle G Sale. Company Ajay Mukarad Kar Rate Te Dastyabahe. Service Center. Atlas Honda Limited Jo Warranty Claim Center Service Area. Jite Honda Motorcycle G Behtreen Service Kai Vendiahe. Honda Company Aja Tamam Genuine Spare Parts. Khususi Riyayat Te Majood. Irshad Autos Te Panji Honda Motorcycle G Karayo Training. Computerized Japanese Testing Machine Azariye. Jehme Mileti Motorcycle G Car Kardigi Tamam Better. Fuel Adjustment, RPMG Adjustment, Computerized Japani Machine Zariye Kai Vaniye Thi. Honda J Qualified Technician G Zere Nigrani. Irshad Autos, Halani Road, Mehrapur. Rabte Dilai 0320180003.
2: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोस पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मैकेनिक जी सहूलत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
3: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
2: हेल्पलाइन नंबर हैदराबाद रीजन 0370-2568321 और हेल्पलाइन नंबर सखई रीजन 0314-775-4462
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवांजी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुख्य बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836।
5: डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठण जा इलाही सारा फायदा आहिनि बाबा। सभ खां पहिरीं ॻाल्हि त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे सभिनी माण्हुनि जे लाइ तयार थी आहे। सभु माना सभु, हिन में मर्द बि अची वञनि था, ख़वातीन बि अची वञनि थियूं। अक्सर कुझु माण्हू वरी चवंदा आहिनि त बाबा क्रीमूं त सिर्फ़ मायूं वणंदियूं आहिनि। वरी हा अगरि असां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि फेशियल जो ज़िक्र कयूं था त तव्हां सोचींदा हूंदा त बाबा ही जेका डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे ख़वातीन जे लाइ आहे, त बिल्कुल बि ईअं कोन्हे को। तव्हांजी सोच खे थोरो चेंज कंदासीं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। त डी स्किन ब्यूटी क्रीम इहे तव्हां सभिनी जे लाइ आहे, मर्द बि लॻाए सघो था, ख़वातीन बि लॻाए सघनि था। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम यकीन तव्हांखे जेको आहे न फेशियल वारा रिज़ल्ट ॾींदी, छो त हिन जे अंदरि जेको आहे वाइटमिनी बीट्स आहिनि ऐं माइक्रो बीट्स आहिनि। इहे जेके ॿई चीज़ूं आहिनि इहे महंगनि महंगनि फेशियल जे अंदरि एड कयूं वेंदियूं आहिनि। इन लाइ जीअं फेशियल जो रिज़ल्ट जेको आहे 10 गुना वधी वञे, त बिल्कुलु तव्हांजी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि बि वाइटमिनी बीट्स ऐं माइक्रो बीट्स खे एड कयो वियो आहे, जीअं तव्हांजी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी रिज़ल्ट 10 गुना ज़्यादा वधी वञे।

सो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको आहे न तव्हांखे सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ ॿ रातिनि जे इस्तेमाल में सफ़ा भलो रिज़ल्ट ॾिए पई. ॿ रातियूं लॻायो ऐं तव्हां पंहिंजे चहिरे खे ॾिसो, चवंदा वाह वाह वाह वाह, पहिरियां छो न पिया वठूं, पहिरियां सिदरा भाजी जी ॻाल्हि छो न पिया वञूं. खैर हाणे बि देरि कोन थी आहे, तव्हां वञो अगरि तव्हांजे घर में शादियूं थियण वारियूं आहिनि. वैसे हाणे मौसम अहिड़ो अची वियो आहे त सभिनी जे घर में तकरीबन शादियूं थियण वारियूं हूंदियूं, त तव्हां बि जल्दी जल्दी कयो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो. ख़ूबसूरत थियण हर कंहिंजो हक़ हूंदो आहे, अगरि तव्हां ख़ूबसूरत थियण चाहियो था ऐं चाहियो था त कोई अहिड़ो प्रोडक्ट असां वटि हुजे जेको असांजी ख़ूबसूरती में चार चंड लॻाए छॾे, त डी स्किन ब्यूटी क्रीम ज़िंदाबाद आहे बाबा, छो था घबरायो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, को टेंशन बि न त भई असांजी स्किन ख़राब थींदी, इहे थींदो, हो थींदो, कुझु बि न थींदो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो, मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, सफ़ा वीआईपी चिकना चिकना गोरा चिटा थी वेंदो. सो लॻायो ऐं लश्कारा मारियो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे. मां माशाला केॾी बकबक कंदी आहियां. हांजी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फेस वॉश बि तव्हां लॻाए सघो था. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फेस वॉश तव्हांजे अगरि अञा ताईं एरिया में अवेलेबल न थियो आहे त तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए वठो. ऐं डी स्किन जो फेस वॉश बि तव्हां इस्तेमालु कयो, ॿई चीज़ूं लॻायो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो. अच्छा उमेद भाई खे हिते ही शमन जो गानो हले पियो. बाबा तव्हां असांखे मीरपुर ख़ासि मां ॿुधो पिया, शमन जो गानो एंजॉय कयो. गदा हुसैन मल्हा लिखंदे आहिनि की बाजी देख ले, आपको मैंने चार साल बाद कोई फरमाइश की थी, वो भी नहीं. अरे भाई किसने कहा कि मैंने आपकी फरमाइश पूरी नहीं करी, मैं चली गई प्रोग्राम करके, आपका गाना नहीं चला. सबर त कयो, रुको ज़रा, सबर करो, तव्हांजो गानो आहे लिस्ट में, तव्हां ॿुधंदा. गदा भाई एॾी तकड़ न कंदा कयो, जल्दबाज़ी भली न हूंदी अथव. और कहते हैं डेडिकेट शॉपकीपर मोहम्मद बख्श मल्हा ज आंदल खान मल्हा बाजी, उसकी दुकान पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है और पूरे विलेज वालों को डिस्काउंट पर दे रहा है. माशाल्लाह क्रीम बहुत बहुत खूब है आपकी तरह, क्या बात है, ये तो भाई मेरी तारीफ हो गई. गदा भाई बहुत शुक्रिया, आप इस्तेमाल कर रहे ही नहीं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, मुझे ये जरूर बताइएगा. अच्छा रिजवान अली भी हमारा शो सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं भाई साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं. और स्मार्टू कहते हैं वाह वाह वाह जुगानो ये उधार जाई थी. और रशीद खोसो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हम क्रीम इस्तेमाल करते हैं और मैं इब्राहिम शाह बुखारी दरगाह से आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, नाइस प्रोग्राम, आपको सलाम, सारे दोस्तों को सलाम. वैसे रशीद भाई क्रीम का नाम तो लिखे, कौन सी क्रीम लगाते हैं. और जी हमारे साथी किशोर भाई बंद कटी बैठा है. खिलो खिलो बाबा, अल्लाह सही करे हमेशा ये तांजे लबन.

सोचने वाली बात है। वैसे ये सही बात है, जो लोग आप लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफें देते हैं, सताते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो आप सोचते हैं कि भाई ये हमारा रिश्ता है, इस रिश्ते को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो कभी कभी रिश्ते किसी बड़ी गलती से नहीं बल्कि सिर्फ अना और खामोशी से भी टूट जाया करते हैं। और एक तरफ दिल चाहता है कि बात खत्म ना हो, दूसरी तरफ ज़बान पर सिर्फ एक लफ्ज भी नहीं आता, माफ कर दो, ये कहना हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है। और हर बहस जीतना भी तकरीबन जरूरी नहीं होता, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर हम बहस करेंगे अपने किसी प्यारे से, किसी अजीज से, या जिसे हम शायद खोना नहीं चाहते, तो जब आप बहस करते हैं ना, तो वो तमाम चीजें जब आप कर रहे होते हैं, तो वो उस इंसान की लाइफ में जो होता है ना, आपकी वैल्यू को इतना कम कर देते, इतना जीरो कर देते हैं कि फिर आप बैठकर सोचते हैं कि मैंने क्या किया था। आपने बहस करी थी तो जो रिश्ते होते हैं ना, उनको संभालने के लिए कभी खामोश रह जाना और कभी कुछ ना कहना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि बाकी जो लोग हैं जिनको हम खोना चाहते हैं, जिनके साथ नहीं रहना चाहते, फिर तो आप जरा रज के बहसें कीजिए, कोई मसला नहीं। लेकिन हाँ, रिश्ता बचाना चाहते हैं तब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है ना, वो जरूरी होता है। बाकी तो ऐसा नहीं है कि भाई एक रिश्ता है जिसके अंदर आप घुट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि भाई उस रिश्ते को बचाना है, तो ये वाली सिचुएशन भी आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए। और आपकी जिंदगी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप लोगों की जिंदगी को एकदम से बदल कर रख देगा। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक 2-in-1 फार्मूला है, मेडिकेटेड फार्मूला है, फेशियल वाली चीजें इसके अंदर ऐड की गई है, तो आप लोग घर बैठे मुनासिब सी कीमतों के अंदर इतना जबरदस्त प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं कि भाई आप इस्तेमाल करने के बाद कहेंगे कि आए हाय मजे आ गए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं और अपनी खूबसूरती को जरा पहचानिए, चाहे आप मर्द हंस जाते हैं।

0: अच्छा, महबूब अली मोरो सिटी से मैं सुन रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर जी, सदा खुश रहें और खुश आमदीद, मुस्कुराती रहें, आमीन। और सिस्टर अलन फकीर का सॉन्ग प्ले करें, सो नाइस ऑफ यू भा। मां कोशिश कयां थी तव्हांजी पसंदीदा जा गाना हलाईंदा जी। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है। अच्छा, तारिक भाई कहते हैं कि डिसेंट ब्यूटी पार्लर जेकब आबाद में है, हमारी व्हाइट एज क्रीम और डी स्किन सेल कर रहे हैं। अच्छा, जेकब आबाद में जितने भी लोग सुन रहे हैं वो डिसेंट ब्यूटी पार्लर से जाकर भी परचेज कर सकते हैं व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। बिलाल डिस ये न कर बाबा, ये न कर, डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचो। उम्मीद भाई कहते असां अञा क्रीम यूज कोन कई आहे, सदरा भाजी जुलरी मीरपुर खास खां उम्मीद अली लाशारी भाउ कयो, ऐं तव्हांजे लाइ असां मीरपुर खास में अवेलेबल बि कराए छॾी आहे। रशीद भाई कहते डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज कई आहे, ओके जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज कंदा रहो। किशोर भाई कहते हैं कि आमीन, हाण अलाह साईं ज़रूरु सोचींदो। वाकई वाकई मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। और कहते हैं हाँ जी, वो सही है, ड्रामे की बात कर रहे हैं, ओके ओके।
1: नाजुक नाजुक बाहन में सोनू चूड़ू पाए तो कसम खणी तो चवां चंड खे।
0: बिलाल कहते मोहतरमा, अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठां पोइ उन सां छा थींदो, उन सां तव्हां खूबसूरत थी वेंदा, तव्हां सुहिणा थी वेंदा, तव्हांजे चहिरे ते जेके रिंकल्स अची विया आहिनि, एकनी निशान आहे या कुझु बि आहे, रंगत सांवरी थी विया आहे त उहा चिटी थी वेंदी, गोरी थी वेंदी, तव्हां सुहिणा थी वेंदा, सम्झो था, कुल मिलाए कटे सटे। सो तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे सघो था।

बाकी साइंस नहीं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा त तव्हां ते बि बमा आई नो आशिक थी वेंदो तव्हां एतिरा सुहिणा थी वेंदा माण्हू तव्हां खां पुछंदा ॾिसो त सही हाल अहिवाल एतिरी ख़ूबसूरती कान आंदी अथव उन्हनि खे तव्हां ॿुधायो बाबा ही कमाल आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम बाबा असांजी पूरी टीम महिनत करे पई तव्हांजे लाइ हर जॻह ते वञी वञी उहो अवेलेबल कराइनि पिया तव्हांजो फर्ज़ बणिजे थो त तव्हां ट्राए करे ॾिसंदा तव्हां ख़बर पवंदी त एतिरो सिदरा आख़िर मथो छो थी हणे छो त बाबा ज़ाहिर ॻाल्हि आहे प्रोडक्ट में दम आहे ऐं प्रोडक्ट कम जो आहे तॾहिं तव्हांखे ॿुधायूं था न त छो ॿुधायूं हा सोचण वारी ॻाल्हि आहे अच्छा रमज़ान भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है दर्द दिल के थी चंदा मैं भी देखती हूँ ड्रामा जी जी देखी देखी अच्छी बात है अच्छा हाशिर अजीम कहते हैं मगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हैं आपको किसने कहा कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते पता नहीं कैसे कैसे चीजों के ऊपर हमने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है क्या जानते हैं आप अच्छा हिदायत अल्लाह कहते प्रोग्राम देखो और फरमाइश देखो वही मैं सोचती हूँ कभी कभी लोग ऐसे ऐसे गानों की फरमाइश कर देते हैं कि मैं सोचती हूँ कि भाई साहब ये गाना मुझे लगाना है हाँ जी लेकिन हम लगा भी देते हैं उम्मीद भाई कहते हैं कि बाजी सिदरा मुझे तरफा चाचा खाले जूने जो को वेलकम कयो ज्वेलरी मेरे पर खास खान उम्मीद अली लाशारी सलाम चाचा खालिद के किशोर कुमार के चोवन कुमार के ओके हो गया जी वैसे चाचा खालिद मुझे नजर नहीं आए पोस्ट पर शायद कमेंट किया था वो करके शायद डिलीट कर दिया पता नहीं तो चाचा अगर सुन रहे हैं तो वेलकम कहते हैं उनको भी अच्छा बिलाल कहते सुना थी वेंदासीं डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज करे पोइ छा थींदो पोइ तव्हांजी शादी थी वेंदी यस फुल एंड फाइनल फुल एंड फाइनल समझो था सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर जिन अञा ताईं शादी कोन थी आहे तव्हांजी शादी थी वेंदी ऐं बाक़ी जंहिंजे घरनि में शादियूं थियण वारियूं आहिनि त उहे बि ट्राए करे सघनि था छो त तव्हां बाबा ये फेशियल या ब्लीचिंग जे चकर में न पओ तव्हांजे हथ में हाणे अहिड़ो मैजिकल प्रोडक्ट अची वियो आहे जेको तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाए छॾींदो तव्हांखे सोनो प्यारो गोरो चिटो बणाए छॾींदो सो तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिकिड़ो मेडिकेटेड फार्मूलो आहे त टिनि चइनि महीने त असांजी स्किन ख़राब थी वेंदी या असां सेंसिटिव स्किन ते लॻाए सघूं था या नथा लगाए सको तुम हर स्किन के मथा लगाए सको था हर कोई लगाए सके तो टेंशन फ्री थी करे लगाए सको था टोमाटो कहते हैं कि सेट ये सॉन्ग किसका फेवरेट है मास्टर मंजूर का ये मैंने ऐवे ही लगा लिया था किसी ने मास्टर मंजूर के गाने की फरमाइश कर दी तो उसके बदले में

ओगरी हजार भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं। हजार भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे ही आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहिए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए।

बाबा शादी थी वेंदी दिल नंढी न कयो तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम त इस्तेमालु कयो पोइ चओ ॿियूं ॻाल्हियूं वरी पोइ कंदासीं या लॻायो त सही ख़बर पएव त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो केॾो ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिले पियो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको आहे न त उहा तव्हां हर मौसम में बि लॻाए सघो था ऐं राति जे टाइम लॻाईंदो जंहिं महिल तव्हां सुम्हण वञो लॻाइण खां पहिरीं तव्हां पंहिंजो फेस वॉश लाज़मी कजो डी स्किन जे फेस वॉश सां सही आहे जॾहिं तव्हां इहे सभु चीज़ूं कंदा पोइ तव्हांखे अहिड़ो वाह वाह रिज़ल्ट मिलंदो वाह वाह रिज़ल्ट सम्झो था सभु तव्हांखे ॾिसी पुछंदा त छा पिया लॻायो छा पिया कयो ॾाढा इहो महांगो फेशियल कराया आहियो पर तव्हां हुननि खे चइजो बाबा मुनासिब क़ीमतुनि में असांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली आहे जंहिंजो इस्तेमालु करे असांखे फेशियल वारा रिज़ल्ट मिली विया आहिनि सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु तव्हांजी ख़ूबसूरती जे लाइ ॾाढो फ़ाइदेमंद जी मैं वही सोच रही थी ये गाना कौन से गाने की कट पर है लेकिन ये आपने बता दिया आपके प्यार में ये बात है ये गाने ना सुनो तो फिर गाने सारे भूल गए हैं अच्छी बात है

राजा दर्दे दिल कहती है कि जिंदगी तब ज्यादा खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट और वजह आप हो। अच्छा ओके समझ गया समझ गया।

दी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाकर हम निखर ने सो आप भी लगाइए, आप भी निखर जाएंगे। इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं इजाजत। वरी तासा मुझे मुलाकात है पाई जी पंज बजे वाले प्रोग्राम में। सो पंज बजे वाले प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करना आई किथे का गलती थी वजह तो माजरत कयूं था। तो फीडबैक रही थी का गानो रही थी सबनी का माजरत कयूं था। सो मोकलानी नाही बाबू सिंह सलामत सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: बड़ी सोच विचार के बाद और मटेरियल एग्जामिन करने के बाद, ढाई घंटे की कैबिनेट डिस्कशन के बाद वजीर आजम साहब को ये मशवरा दिया गया कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हालात ऐसे हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से, जिसे आम लफ्जों में अंदरूनी खलफशार कहते हैं, और सरहद पार से भी जो दुरंदाजियां हैं, दारंदाजियां हैं, उनको सामने रखते हुए और जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत का रवैया रहा है वॉर अगेंस्ट टेरर में, और बिलखसूस जो पिछले एक साल से जब से मौजूदा काबीना ने वहां पे इख्तियारात संभाले 15 अक्टूबर 2025 से ऑनवर्ड, वो अलार्मिंग हद तक मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनता जा रहा था।
1: केपीएम इमरजेंसी गवर्नर राज जो फैसलो सोची समझी कयो वयो। सोहेल आफरीदी जी वडे वजीर थियण बाद सूरत हाल मुल्की सलामती के खतरे ताईं पहुंची वई। कौमी असेंबली में गालाईंदे कानून वारे वजीर सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ चयो आहे त बार बार निशानदे बावजूद केपी हुकूमत ॻाल्हि न मञी। दिफा वारे वजीर ख्वाजा आसिफ चयो त पीटीआई हुकूमत दौर में जेको कुझु कयो सभु यादि आहे, केपीअ में गवर्नर राज खां सवाइ ॿियो को ऑप्शन न हो। पाकिस्तान ऐं ओमान वापार खे वधीक हथी ॾियण ऐं खिते में अमन लाइ गॾिजी कमु करण ते इतफ़ाक़ करे वरितो। अमानी परॾेही वज़ीर बदर बिन हमद जे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां मुलाक़ात। ॿिनि तरफ़नि लाॻापन समेत खिते जे सूरत हाल ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। ॿिन्ही अॻवाणनि जो खिते जे अमन लाइ सहकार जारी रखण ते इतफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान ऐं ओमान विच में लाॻापा तारीख़ी दोस्ताना ऐं मज़बूत बुनियादनि ते क़ाइमु आहिनि। ओमानी परॾेही वज़ीर चयो आहे त पाकिस्तान सां वापार समेत ॿियनि शोबनि में सहकार वधायो वेंदो।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: अदा
4: वालेकुम असलाम। अदा छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा
5: यार, अॼु कल्ह शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।

0: ऐं बीरोनो की स्किन हण इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे उन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ टिन ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक ख़ूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: हेल्पलाइन नंबर हैदराबाद रीजन 03702568321 और हेल्पलाइन नंबर सखई रीजन 03147754462
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन White Age Beauty Cream.

0: मेरा वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: इल्जाम लगाए आप सदर पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो हालात बने हैं सियासी कानूनी और आईनी वो पीटीआई की खास तौर पे उनकी सिपाही की आदत उसमें उनका अहम किरदार है। एक बार फिर अपना हाथ वजीर आजम साहब को हम सब अपना हाथ अपोजिशन को अपोजिशन की क्यादत को अपोजिशन की सियासी जमातों से आगे बढ़ाते हैं कि आए हम बातचीत करें।
6: बिलावल भुट्टो जरदारी केपीए में गवर्नर राज जो जिम्मेवार पीटीआई के करार दई छो हुकूमत अपोजिशन के गाल की तजवीज भी दई छी। कौमी असेंबली में खिताब कदे बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत इमरजेंसी वाला आइटमी बम इस्तेमाल करण का पैं पोजिशन से गाल करे अपोजिशन के मञणो पवो तो पीटीआई हुकूमत पा सियासी आपघात सदर आइन मूजिब केपीए में इमरजेंसी ए गवर्नर राज लगायो फैसलो हमेशा लाए ना है हुकूमत अपोजिशन मामले ते वेही बीहर गालियों करे हालतू बेहतर थियो तो वजीर आजम के इमरजेंसी खत्म करण की दरख्वास्त कंदुस। पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत कर रहा है दहशतगर्दी के सूरत में भारत जो ऑपरेशन सिंदूर अज भी जारी है। भारत का पाक फौज हथा तबाह थियल छह जहाज हजम नी रहा सभी के मुतहदी दहशतगर्दी के खिलाफ विहणो पवो।

0: बड़ी सोच विचार के बाद और मटेरियल एग्जामिन करने के बाद ढाई घंटे की कैबिनेट डिस्कशन के बाद वजीर आजम साहब को ये मशवरा दिया गया कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हालात ऐसे हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से जिसे आम लफ्जों में अंदरूनी खलफशार कहते हैं और सरहद पार से भी जो दुरंदाजियां हैं दारंदाजियां हैं उनको सामने रखते हुए और जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हकूमत का रवैया रहा है वॉर अगेंस्ट टेरर में और बिलखसूस जो पिछले एक साल से जब से मौजूदा काबीना ने वहां पे इख्तियारात संभाले 15 अक्टूबर 2025 से ऑनवर्ड वो अलार्मिंग हद तक मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनता जा रहा था।
1: केपीएम में इमरजेंसी है गवर्नर राज जो फैसलो सोची समझी कयो वयो सोहेल आफरीदी जी वडे वजीर थियण बाद सूरत हाल मुल्की सलामती के खतरे तई पहुंची वही। कौमी असेंबली में गालाईंदे कानून वारे वजीर सेनेटर आजम नजीर तारड़ चयो आए त बार बार निशानदी बावजूद केपी हुकूमत गाल न मनी। दिफा वारे वजीर ख्वाजा आसिफ चयो त पीटीआई हुकूमती दौर में जेको कुछ कयो सब याद आए केपीए में गवर्नर राज खां सवाइ बियो को ऑप्शन न हो।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट
7: हेल्पलाइन नंबर हैदराबाद रीजन 03702568321 और हेल्पलाइन नंबर सखे रीजन 03147754462।
8: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम महरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरा पर राब्ते जे लाइ 03201800003।
9: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर,
6: 0300-333-85-69। अस्सलाम वालेकुम अदा।
10: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
10: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न? अदा
11: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
10: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
11: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
10: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
12: 0301-399-2836।
13: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-33-85569।
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: खुश्क ऐं बेरोनो की स्किन हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ टिनि ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: हेल्पलाइन नंबर हैदराबाद रीजन 03702568321 और हेल्पलाइन नंबर सखई रीजन 03147754462
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन White Age Beauty Cream.

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन पोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूदु आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 ऑटोज़ मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94

0: It's 5 PM. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: बाजी कई ठहराव में आर्टिकल 232 तहत सदर पारा केपी में लगायल इमरजेंसी के कौमी असेंबली मंजूर करे थी.
6: खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पे पीटीआई की हुकूमत पे पीटीआई ने खुद एक सियासी खुदकुश हमला किया है. आप वफाक की हुकूमत पे इल्जाम लगाए, आप सदर पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए, बट इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो हालात बने हैं सियासी कानूनी और आईनी वो पीटीआई की खास तौर पे उनकी सिबाई की आदत उसमें उनका अहम किरदार है. एक बार फिर अपना हाथ वजीर आजम साहब को, हम सब अपना हाथ अपोजिशन को, अपोजिशन की क्यादत को, अपोजिशन की सियासी जमातों से आगे बढ़ाते हैं कि आए हम बातचीत करें.
5: बिलाल भुट्टो सरदारी केपी में गवर्नर राज जो जिम्मेवार पीटीआई के करार दे छो. हुकूमत ने अपोजिशन के गालियों करने की तजवीज भी दे छी. कौमी असेंबली में खिताब कदे बिलाल भुट्टो सरदारी हुकूमत इमरजेंसी वो एटमी बम इस्तेमाल कर अपोजिशन से गाल अपोजिशन के मजनो पव तो पीटीआई हुकूमत पा सियासी आपघाती हमलो कयो. सदर आइन मूजिब केपी में इमरजेंसी गवर्नर राज लगा फैसलो हमेशा लाए ना है. हुकूमत अपोजिशन मामले ते वेही बीहर गाल हालतू बेहतर थियो तो वजीर आजम के इमरजेंसी खत्म करने की दरख्वास्त कदस. सिहोनी अंसर पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत कर रहा है. दहशतगर्दी की सूरत में भारत जो ऑपरेशन सिंदूर अज भी जारी है. भारत का पाक फौज हथा तबाह थियल 6 जहाज हजम न थी रहा है. सभी के मुतहद थी दहशतगर्दी के खिलाफ बिहणो पवन. कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर महमूद खान चकसई हुकूमत का केपी में खयल कदम वापस वठण जो मुतालबो कर छो. कौमी असेंबली के खिताब कदे महमूद खान चकसई हुकूमत जा कदम खैर आइनी वापस वरता वन. बेसर गोहर हुकूमत जमहूरियत राता हो हयो है. हुकूमत 58(2)(b) के बीहर जिंदा कयो है. अवां चूंडल हुकूमत के घर पेड़ो कयो. समूरा नोटिफिकेशन रद्द कयूं था. समूरे पाकिस्तान के गैर फाल कयो वियो है.
7: बड़ी सोच विचार के बाद और मटेरियल एग्जामिन करने के बाद 2.5 घंटे की कैबिनेट डिस्कशन के बाद वजीर आजम साहब को ये मशवरा दिया गया कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसे आम लफ्जों में है और सरहद गाजियां हुए तो खैबर रहा और बिलखसूस एक

राज जो फैसलो सोची सब्जी कयो वियो सुहेल आफरीदी जे वॾे वज़ीर थियण बाद सूरतहाल मुल्की सलामती खे ख़तरे ताईं पहुची वई। क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तरड़ चयो आहे त बार बार निशानदेही बावजूद केपी हुकूमत ॻाल्हि न मञी। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो त पीटीआई हुकूमती दौर में जेको कुझु कयो सभु यादि आहे, केपी में गवर्नर राज खां सवाइ ॿियो को ऑप्शन न हो।

ख़ुदा जे वास्ते के पी सां गॾु सिंध ते बि नज़र रखो। पीटीआई वटि फ़ैसिले खे ग़लति साबित करण लाइ को दलील नाहे। क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे एम क्यू एम अॻवान फारूक सत्तार चयो त हुकूमत के पी में गवर्नर आज जो फ़ैसिलो दिलि सां नाहे कयो, जेका नज़र के पी ते आहे साॻी सिंध ते बि रखी वञे। पीटीआई के पी में एमरजेंसी ऐं गवर्नर राज खे पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज करे छॾियो। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जी तरफ़ां वकील अलील ज़मान दरख़्वास्त दाख़िल कराई। बैरिस्टर गोहर चयो आहे त गवर्नर राज ऐं एमरजेंसी खे पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज करे छॾियो आहे। उमीद आहे अदालत सूबे में जमहूरियत बहाल कंदी।

0: पाकिस्तान ओमान वापार के वधिक अती ॾियण ऐं खिते में अमन लाइ गॾिजी कम करण ते इतफ़ाक़ करे वरितो। ओमानी परॾेही वज़ीर बदर बिन हमद जी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां मुलाक़ात, बेतरफ़न लाॻापन समेत खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही अॻवाननि जो खिते जे अमन लाइ सहकार जारी रखण ते इतफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान ऐं ओमान विच में लाॻापा तारीख़ी, दोस्ताना ऐं मज़बूत बुनियादनि ते क़ाइम आहिनि। अमानी परॾेही वज़ीर चयो त पाकिस्तान सां वापार समेत ॿियनि शोबनि में सहकार वधायो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 0320180003।
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।

0: मौजूद आहिन फौजी बहरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वैक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300338569। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो डी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359212।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह, हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर।

असांजे किबन में जरातियूं लुटायूं फिर है मुक्त झूमक जियां से सजायूं फिर है मुक्त झूमक जियां से सजायूं न पाती असां काई माला न पाती चमेली वलियूं हर अंगण ते लगायूं चमेली वलियूं पे चंड तड़ पियो।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

प्रोग्राम आए सेहत की गाल असाजे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर मंजूर हुसैन मऊन साहब डॉक्टर साहब तुम एक बेहतरीन माशाल्लाह जान डी पेशेंट हो जो तक बस जो बुधाए वो सर जो जाहिर उन फायद पो है वो पाँ व्यूज रिकॉर्ड कराया वो है तो बिहार भी उन फायद वन जी सर सर बिल्कुल यह एक हमदर्दी होंगी है सर जी असने प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था असान जो लाइव कॉल जो नंबर है 0301-9196-851 डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर सूमर से सुबह 11 to 5 तीन जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक सामू वदन पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेरापुर में मरीजों जो इलाज कंदा आइन नोट अंगारे जो डी डॉक्टर साहब जी क्लिनिक बंद होंगी है इन में हफ्ते जा 3 जुम्मो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुल फ्री होंगी है बाकी दवा मरीज के स्टोर तक वठनी होंगी है।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: कमर्शियल ब्रेक बाद। कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफ़ो बीहर मां सभिनी ॿुधंदड़नि खे ख़ुश आमदीद चऊं था। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहब। ऐं अव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851 0301-2196-851। डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में गुर्दे पिते ऐं मसाने जे पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। संदनि जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुनरग जो सूरु, नक कन, गलो, नज़लो, निछूं, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फाल जी खंघि, टीबी, मैदे जो सूर, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधण, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरणियूं, ॿारनि में कद जो न वधण ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाब इलाजु कंदा आहिनि। प्रोग्राम में हिकु पहिरीं कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम साईं, नादर अली सियाल होटल मेरापुर खां बाबा
0: जी अदा, छा पुछण था डॉक्टर साहब खां?
1: हथ जेको सड़ी पियो माशाल्लाह असांजो बहितर आहे, डॉक्टर साहब असांखे दवा ॾिसी तेल वग़ैरह।
0: जी जी।
1: हाणे साईं हिकिड़ी कन जो जेको आहे सॼे मुंहिंजे कन जो ढकड़ी छा पियो टाइम बंदि थी थी वञे।
0: जी जी,
1: इहो डॉक्टर खां पुछंदा साईं।
0: हा ठीकु आहे डॉक्टर साहब, तव्हांखे ॿुधाए थो रेडियो ॿुधो। सर पहिरियां पेशंट पहिरियों शायदि ॾेखारियो आहे, दवा वरिती आहे, उनखे फीडबैक ॾिनो हुन सर, त माना फ़ाइदो फ़ाइदो पियो आहे।
2: होटल त सियाल होटल त लाइव कॉल प्रोग्राम जे दौरान लाइव कॉल कई त हुनजो हथु जेको आहे सो सड़ी पियो आहे, त हींअर छा कजे फर्स्ट एड तौर ते? त मां हुनखे ॿुधायो त पचाइण वारो जेको तेल हूंदो आहे उहो तव्हां जेको आहे सो हथ खे लॻायो, तव्हांजो हथु जेको आहे सो इनशाला सही थींदो आहे। हुन दोस्त उहो अमल उन वक़्तु कयो ऐं अलहमदिल्ला हुन इहो फीडबैक ॿुधंदड़नि ताईं पहुचायो त अलाह जी महिरबानी सां जेको असां कुदरती ऐं हिकिड़ो ॾस ॾींदा आहियूं त उनजे दौरान हुन उहो ई कयो, उनखे कंहिं डॉक्टर ॾे उन वक़्तु वञण जी ज़रूरत न पई, का बाज़ारू शइ वठी अची हणण जी ज़रूरत न पई ऐं अलाह जी महिरबानी सां हुनखे शिफ़ा मिली वई। या हुनजी महिरबानी दोस्त जी, हुन कॉल करे जेको आहे सो ॿुधायो। ऐं ॿियो दोस्त हींअर मशवरो कयो वरितो आहे त कन जे जेको आहे सो यानी ॿुधण जो मसइलो हुन सां आहे, त मां दोस्त खे मशवरो ॾींदुसि, हिकु त ज़ैतून जो तेल जेको आहे सो बिल्कुलु कन जे पापड़ी जी या जेके कन जे पोयां उनखे लॻाए सघनि था। ऐं बादाम, मिसरी ऐं सौंफ़ अदद पाउ वठी करे सफ़ूफ़ करे चमची सुबुह शाम खाइनि, इनशाला उन सां बि काफ़ी फ़र्क़ु अची वेंदो आहे। वरना उनजी ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में आहे, दोस्त खे चवंदासीं त इहे अमल करे ॾिसनि, जेकॾहिं फ़र्क़ु पइजी वञे त ठीकु आहे, वरना पोइ रूबरू ॾेखारे सघनि था। वरी महिरबानी हिकु दफ़ो ॿीहर उन दोस्त जी, जंहिं असांजे ॿुधंदड़नि ताईं ए आई असांखे बि इनकरेज करण जे लाइ हुन जेको आहे सो पंहिंजो फीडबैक ॾिनो, वॾी महिरबानी।
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहब। ऐं अव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851 0301-2196-851। डॉक्टर साहब हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 11 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटडी रोड मैरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। ऐं नोट, डॉक्टर साहब जी क्लिनिक अंगारे जॾहिं बंदि हूंदी आहे ऐं हिन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो, छंछर, आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे, बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे।

0: आड़ींदी आहे, हुनखे जलाईंदी आहे, हुनखे ख़तमु कंदी आहे। अव्हांजे जिस्म मां जेके ख़राब मादा, ज़हरीला मादा हूंदा आहिनि, तॾहिं उहे अख़राज थींदा आहिनि ऐं अव्हांजो जिस्म पोइ बिल्कुलु साफ़ु थींदो आहे। न सिर्फ़ु अव्हांजी ख़ारिश ख़तमु थींदी आहे, पर इन्हनि ॾसनि पननि सां, इन्हनि दवाउनि सां अव्हांजे जिस्म ते जेके ॿिया बि असरात हूंदा आहिनि, दाग़ अची वेंदा आहिनि, या जेको आहे सो जिस्म में बि हिकिड़ी गरमाइश हूंदी आहे, उहा बि अव्हांजी ख़तमु थी वेंदी आहे। लेकिन हिते जेको आहे सो तुर्त इलाजु खपे, माण्हू वञी ऐं सुयूं हणाईंदा आहिनि ऐं पोइ उनजो आदि थी विया आहिनि। साल साल हुननि जी बीमारी न छॾींदी आहे, रड़ हूंदी आहे, रड़ खनखना हूंदी आहे, ऐं सिर्फ़ु इन जे करे जो हू सुयुनि जा आदि थी चुका हूंदा आहिनि, उन्हनि ज़हर जा आदि थी चुका हूंदा आहिनि, उन्हनि दवाउनि जा आदि थी चुका हूंदा आहिनि, जेके उन्हनि खे यानी बर वक़्तु सिर्फ़ु जेको आहे सो फ़िलहालु फ़ाइदो थींदी आहे, लेकिन हुनखे मर्ज़ न छॾाईंदी आहे। सो इन जे करे महिरबानी करे जॾहिं बि कंहिंखे अहिड़े क़िस्म जी थिए थी त हिकु त पंहिंजे खाइण पीअण जो बिल्कुलु ख़्यालु रखो, अहिड़े तरीक़े सां जेकी जिन जेकी शयूं तव्हां सम्झो था तव्हांखे जिन मां ख़ारिश थिए थी, अंडो, मच्छी, वाङणु, वॾो गोश्त, खटी शइ, देग जो चांवर, उहे तव्हां हरगिज़ इस्तेमालु न करियो। ऐं जेके शयूं ज़्यादा इस्तेमालु तव्हांखे करणियूं आहिनि, थधियूं शयूं इस्तेमालु कयो, पाणी ज़्यादा जेको आहे सो इस्तेमालु करे सघो था, ऐं जीअं मां ॻाल्हि कई त पनीर इस्तेमालु करे सघो था, निम सां तव्हां वेहिजो, अव्हांखे काफ़ी सारो फ़ाइदो पइजी वेंदो, वरना रूबरू ॾेखारे ऐं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराए। वॾी महिरबानी।
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहब। प्रोग्राम में ॿी ॻाल्हि जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: जेदा कहिड़े किथां खां?
0: स्पेशली फीडबैक जेके दोस्त ॾींदा आहिनि जिन खे फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे। अलहमदिल्ला अॼु टियों पेशंट आहे जिन जेको आहे सो यानी हिकिड़ी फ़ाइदे जी हिकिड़ी निशानदेही कराई आहे, त अलहमदिल्ला हुनखे फ़ाइदो। ॾिसो, हीअ हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे, हिकिड़ो पेशंट केरु मोकिले थो ऐं हुनखे फ़र्क़ु पए थो, वरी उनजी ॿियनि खे ॿुधाइण त हुन मां असांखे फ़र्क़ु पियो आहे। हीअ हिकिड़ी तमामु बहितरीन जेको आहे सो ॻाल्हि आहे ऐं वॾी महिरबानी भाउ ख़ादिम हुसैन सोलंकी जी।
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहब, जेके अव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। तव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था, 0301-9196-51 ऐं इहो ई साॻियो ई नंबर आहे डॉक्टर साहिब जो कॉन्टेक्ट नंबर। डॉक्टर साहिब सां कंहिं वक़्तु कॉल करे कंहिं बीमारी बाबति तव्हां ॼाण हासिलु करे सघो था। डॉक्टर साहिब, हर अरबा ख़मीस जुमे छंछरु आचर सूमर ते सुबुह 11 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधन पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मैरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। प्रोग्राम में हिकु ॿी कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
3: छा
1: पुछण चाहींदा डॉक्टर साहब खां?
3: सर, मुंहिंजे इहो पंहिंजो जंघनि जे पाड़नि में सूर आहे ऐं बाहनि जे पाड़नि में ॾाढो सूर आहे, तमामु अरसो इलाही थी वियो आहे।
1: अच्छा, इनखे केतिरो टाइम थी वियो तक़रीबन?
3: तक़रीबन साल थी वेंदो, पर दवाऊं ॾाढियूं वठियूं आहिनि।
1: अच्छा, पोइ एतिरो टाइम थी वियो आहे डॉक्टर साहिब खे रूबरू ॾेखारे वञो आहे, त हिन महिल ताईं तव्हां अलहमदिल्ला बिल्कुलु सही हुजो आहे।
3: बसि हेॾे कोन अचणु थियो आहे।
1: हा, ठीकु आहे, डॉक्टर साहिब तव्हांखे ॿुधाए थो, रेडियो ॿुधो। जी सर, हुन सर तक़रीबन साल लोड़ियो आहे पंहिंजे सूर दर्द में, ॿिए हंधि बि ॾेखारियो आहे, लेकिन ज़ाहिर आहे
0: हाणे बिल्कुलु
1: फाइनली चई चवंदो सर आख़िर में तव्हांखे
0: हिकिड़ो टाइम थींदो आहे, को वेझिड़ाई खां थींदो आहे त उनजो को ॾसपंदो ॾेई सघिबो आहे। हिकिड़ो पुराणो मर्ज़ु आहे त उन में हींअर ट्रीटमेंट यानी इलाज ई ज़रूरी आहे। सो मां भाउ खे इहो मशवरो ॾींदुसि त रूबरू ॾेखारे वञनि ऐं ट्रीटमेंट उनजो इलाजु कराइनि त उहो वधीक बहितरु आहे। जी सर,
1: प्रोग्राम में आख़िरी कॉल जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम।
1: जी प्यारा भाउ, कह रहे किथां खां?
4: साईं
1: हुसैन, माशाल्लाह तमामु सर असांजो लिसनर आहे, ॿुधंदड़, असांजी जी एफ एम 94 जो जी असां छा पुछण चाहींदा डॉक्टर?

0: आपका असांजे प्रोग्राम जे बारे में
1: बिल्कुलु
0: ज़रूरु फीडबैक
1: सर,
0: ॾींदा।
1: पहिरियां त आउं अव्हांखे मुबारकबाद ॾींदुसि तव्हांखे ऐं डॉक्टर साहिब खे बि। तव्हां माशाल्लाह बहितरीन प्रोग्राम कयो पिया ऐं डॉक्टर साहिबु बहितरीन मशवरा ॾिए पियो। ऐं डॉक्टर साहिब खे मां हिकिड़ो फीडबैक ॾींदुमि त मां कुझु ॾींहं पहिरियां पंहिंजे माना सुबुह सवेर जे उथण जे बारे में मां हिकिड़ो इतला ॾिनो त उथंदो आहियां त मूंखे थोरी कमज़ोरी ऐं फेरिंग ईंदी आहे। ऐं हुन खां बाद जॾहिं मां ॿ टे चकर ॾींदा मां सही थींदा। डॉक्टर साहिब जेके मूंखे टिप्स ॿुधाया ऐं मूं उन्हनि ते अमल कयो, उहे मां जेको टिप्स हिकिड़ो बादाम मिसरी ऐं साईं वॾा वॾा थिया उहे मां घोटे पची हाणे बिल्कुलु ऐं मूंखे इलाही फ़ाइदो आहे ऐं मां तंदुरुस्तु आहियां।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह तमामु बहितरीन। ऐं अव्हां जेको फीडबैक ॾिनो आहे इहे अव्हां सॼणनि जो दोस्तनि जो महिरबानी आहिनि जेके असांखे प्यार मोहबत।
1: हा बिल्कुलु। ऐं इहो ई जेको आहे साईं जो ॾस मां ॿिनि खे बि ॾसियो आहे जेके सुबुह सवर सां पंहिंजो पाण खे थोरो उहे बि हिते अमल कनि पिया ऐं साईं जन मशवरा ॾियनि था, बिल्कुलु बहितर मशवरा आहिनि ऐं जिन बि माना अमल करे उन्हनि खे फ़ाइदो थियो आहे।
0: बिल्कुलु माशाल्लाह सर ज़बरदस्त जी।
1: ऐं तव्हांखे माशाल्लाह तव्हां जेको आहे बहितरीन प्रोग्राम कयो पिया
0: थैंक यू सो मच। इहा अवां सॼणनि जी महिरबानी आहे, अवां सॼणनि जो प्यारु आहे जेको असां इहे माना ॿुधायो था, हिकु रिज़ल्ट ॾियो था, व्यू ॾियो था।
1: जेको डॉक्टर साहिबु ऐं आहिनि माशाल्लाह नौजवान प्यारा आहियो, डॉक्टर साहिबु प्यारो आहे ऐं माशाल्लाह अलाह साईं डॉक्टर शाह जे हथ में शिफ़ा था फरमाई ऐं डॉक्टर साहिब जे हथ में शिफ़ा आहे
0: जी सर। माशाल्लाह तमामु घणी महिरबानी भाउ जी, हुन फीडबैक बि ॾिनो ऐं कंहिंजी साल सियाल खां पियो ॻाल्हाए सर।
2: ज़बरदस्त हिन दोस्त जी जेको आहे सो वॾी वॾी महिरबानी इनकरेज करण जी। ऐं इन ॻाल्हि ते वरी हिकु दफ़ो ॿीहर असां रब ताला जो शुक्र अदा कयूं था। इन में असांजी मुंहिंजी का बि कमालियत कान्हे का, इन में अलाह ताला जा जेको आहे सो अहसान आहिनि। अलाह ताला हिकिड़ी शिफ़ा रखी आहे, जीअं दोस्त ॻाल्हि कई असांजे शिफ़ में हथ में शिफ़ा आहे, त इहा अलाह ताला जा अहसान आहिनि। ऐं इहे जेको आहे सो इन्हनि जेके कुदरती शयूं आहिनि उन्हनि में ॾिसो असां बार बार बार बार इहे सिर्फ़ु चवंदा आहियूं त भई ही कुदरती शयूं आज़मायो, छो जो असांजो दवाऊं बि इन्हनि ई शयुनि मां ठहियल आहिनि। ॾिसो हिननि जो को बि साइड इफ़ेक्ट कोन्हे को ऐं हीअ कुदरती शयूं आहिनि, हिननि जो को साइड इफ़ेक्ट कोन्हे को ऐं हिकिड़ी बहितरीन जेको आहे ग़िज़ा बि आहे, दवा बि आहे। बादाम, सौंफ़, मिसरी ऐं अछा मिर्च हर क़िस्म जे रगुनि जी कमज़ोरी खां, दिमाग़ जी कमज़ोरी खां तव्हां सफ़ूफ़ करे चमची सुबुह शाम खाई सघो था। दोस्त खे इहो चई सघूं था, लेकिन कंहिं कंहिं दोस्त खे को मसइलो हूंदो आहे त उनजे बारे में जेकॾहिं बहितर इहो रहंदो त उहो दोस्त लाइव कॉल करे ऐं पुछी करे पोइ इस्तेमालु करे त अञा वधीक बहितर आहे। अव्हां सभिनी जे साथ जो, प्यार जो, मुहबत जो, ख़ुलूस जो थोरायतो आहियां, वॾी महिरबानी।
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु हुआ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहबु। वक़्तु गुज़रंदे देरि न लॻंदी ऐं असांजो अॼोको प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो। दुआ आहे त अलाह पाक तव्हां सभिनी खे सदा तंदुरुस्त ऐं ख़ुशि रखे। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान अहसान अली सियाल खे। अलाह हाफ़िज़, अलाह वाही।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
1: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज

0: मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन.
1: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है.
2: सुपर वाइज हेल्पलाइन नंबर हैदराबाद रीजन 03702568321 और हेल्पलाइन नंबर सखई रीजन 03147754462.
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे. सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे. होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद. इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर. फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी. होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी. इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003.

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि। तेलाए मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 03003118956। A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा, खमीस जुमे, छंछर, आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कान जो सूर दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी

0: वो भी सुपर वाइट की। ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
1: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
0: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
1: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
2: सुपर वाइट हेल्पलाइन नंबर हैदराबाद रीजन 03702568321 और हेल्पलाइन नंबर सखई रीजन 03147754462।
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नौ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई?
4: न अदा
6: यार, आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
5: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013808743।
7: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: iron store Halani, wholesale depot, a name to be trusted.
1: Sariya, Garder, Tier, Engel, Channel Patti, Lohi Darwaza, Silverja Chong, Cement, Reti, Kresh, and Rang Vagera Bazaar from Baria Dastyab.
0: Hane Yachu, Mehran Iron Store, Nazd Baloch Petrol Pump, National Highway Halani.
1: Raptilai, proprietor Gulam Nabi Mughal, 03003204372, and 02424601000.
2: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी आवाम लाए खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छडायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोस पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर ता सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मैकेनिक जी सहूलत पिण मौजूद आहे उन सां गड सिंध शादी हाल सां गडो गड A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि Raptilai Malik Khushi Muhammad 03023295894 and Face Muhammad Pahiyar 03003118956 A1 Autos Mehrapur Nalo Ahi Etamadajo
3: Khubsurti ka asal raaz Sirf D-Skin Beauty Cream इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो असली ग्लो

0: हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कामयाब लाण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे मुझे एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

0: बड़ी सोच विचार के बाद और मटेरियल एग्जामिन करने के बाद, ढाई घंटे की कैबिनेट डिस्कशन के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये मशवरा दिया गया कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हालात ऐसे हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से, जिसे आम लफ्जों में अंदरूनी खलफशार कहते हैं, और सरहद पार से भी जो दारंदाजियां हैं उनको सामने रखते हुए, और जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हकूमत का रवैया रहा है वॉर अगेंस्ट टेरर में, और बिलखसूस जो पिछले एक साल से जब से मौजूदा काबीना ने वहाँ पे इख्तियारात संभाले 15 अक्टूबर 2025 से ऑनवर्ड, वो अलार्मिंग हद तक मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनता जा रहा था।
1: केपी में इमरजेंसी है, गवर्नर आज जो फैसलो सोची सब्जी कर गयो सोहेल आफरीदी जे वडे वजीर थियण बाद सूरतहाल मुल्क की सलामती के खतरे ताईं पहुंची वई हुई। कौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे कानून वारे वजीर सेनेटर आज़म नज़ीर करण चयो आहे त बार बार निशानदेही बावजूद केपी हुकूमत ॻाल्हि न मञे। दिफा वारे वजीर ख्वाजा आसिफ़ चयो त पीटीआई हुकूमती दौर में जेको कुझु कयो सभु यादि आहे, केपी में गवर्नर राज खां सवाइ ॿियो को ऑप्शन न हो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
3: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सड़के रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज़ टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर। एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस

0: सेंटर, एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई,
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।